शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

फूलों से सीखिए दोस्तों। फूलों का जीवन बहुत ही स्वाभाविक, सहज और सरल होता है। वो अपनी प्रसन्नता से खिलते हैं। ये दूसरी बात है कि उनकी प्रसन्नता से दूसरे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह का जीवन अगर मनुष्य का हो जाए तो उसके जीवन में भी स्वाभाविकता, सहजता और सरलता आ जाएगी। वो प्रकृति के सौंदर्य को प्राप्त कर सकेगा, खुद खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रख पाएगा।

एक समय था जब बेईमानी शब्द गाली जैसा लगता था। वक्त बदल गया और लोग किसी भी तरह से सफलता पाने की चाह रखने लगे और बेईमानी भी बस एक योग्यता बनकर रह गई, यानी कि एक एलिजिबिलिटी, एक कला बन गई बेईमानी। बेईमान लोगों को मुखड़ा बना दिया जाता है और वो कैसा भी काम निकालकर ले आते हैं। ऐसे में दूसरे लोग मानने लगते हैं कि बेईमानी भी दरअसल एक कला है, एक योग्यता है। आप बेईमानी के साथ क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, एक बेईमान को हटाओ तो दो नए आ जाएंगे, आप कहेंगे। इसलिए विचार ये करिए कि उसकी बेईमानी आपको प्रभावित ना कर जाए, आपको इन्फ्लुएंस ना कर जाए, आपको अफेक्ट ना डाल दे। और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए कि हम उसकी बेईमानी को सुधारें, बढ़ाएं नहीं। एक गलत व्यवस्था में से अच्छे व्यक्ति को तो निकलना ही पड़ता है। ये काम हनुमान जी ने विभीषण के साथ भी किया था। विभीषण लुटेरों और बेईमानों की नगरी लंका में रहते थे, रावण के भाई थे। लेकिन हनुमान जी ने उस बेईमानी में से एक ईमानदार को बाहर निकाला। आज भले ही लोग अज्ञानता के कारण विभीषण को घर का भेदी कहें, पर विभीषण इस बात का भी तो प्रतीक है कि बुराई के बीच में से अच्छाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान है वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए दोस्तों ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे सुखदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर सुखदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए, लेकिन सुखदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस सुखदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं, लेकिन कल अगर कोई आपकी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करने लग जाए तो आप उससे तुरंत झगड़ने लगते हैं। विश्वास में जीने में भला क्या बुद्धिमानी है? विश्वास में जीने से क्या लाभ है? सिर्फ इतना ही कि आपका अहम संतुष्ट हो जाता है। मैं नहीं जानता, अहम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अहम को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी खास स्थिति में जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं, वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में

नहीं हो रही, वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है, किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है, वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं, शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है, शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, चारों तरफ पूछा जाता है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है? देखिए, सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन जवाब बहुत रहस्यमयी और गूढ़ है। अब सुनिए, जो कहता है कि केवल उन्हीं बातों को सुनूंगा जिनको सुनने से मन में परम पुरुष की ओर बढ़ूंगा मैं, केवल उन्हीं बातों को सोचूंगा जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, केवल उन्हीं को अपने मन का विषय बनाऊंगा जिसकी भावना लेने से मन चैतन्य की ओर बढ़ता है, ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का काम क्या होता है। ऐसे मनुष्य के लिए यह बिल्कुल ठीक है कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए मन को जो कुछ भी ग्रहण करें उसमें ईश्वर की भावना हो। ठीक उसी तरह कामेंद्रियों से मनुष्य जो कुछ भी करे उनके प्रति उसे ये भावना लेनी होगी कि वे सभी वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। ऐसे में वो बाहर की जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगा वो ईश्वर की भावना के साथ होगा, तो वो आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, सुनने से, मनन करने से और ध्यान करने के जरिए मनुष्य बहुत पुण्य कमा सकता है, फिर महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से भी पुण्य अर्जित हो सकता है। अब ये कैसे होता है? अचानक मन में एक भावना का उदय होता है कि मैं इस विराट, इस महान व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं। ये भावना मन में लगातार बढ़ती रहती है। इस भावना के बढ़ते रहने के कारण मन पवित्र हो जाता है, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसी तरह महापुरुषों के स्पर्श से भी मन पवित्र हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए ये कहना बहुत ही संगत है कि महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से जीव की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। जहां दर्शन या स्पर्श के बदले मन में नजदीक जाने का भाव होता है, वहां ना दर्शन करने की जरूरत होती है और ना ही स्पर्श करने की। सुनने के शब्द को रखा गया है धर्म के प्रचार के लिए। मानव मन में सात्विक भाव जगाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आप कीर्तन करते हैं तब उससे केवल आप ही आनंद पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है जब वो दूसरों के कानों में पड़ता है तो उन्हें भी खुशी मिलती है, उनकी भी उन्नति हो जाती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यहां सुनने के शब्द को बहुत जरूरी समझा गया है। दूसरा है मनन, यानी कि विचार करना, अपने आप में सोचना। अच्छा हो या बुरा, काम हमारा मन ही करता है। देखिए, केवल हाथ पैर काम नहीं करते। हाथ से तो चोरी करने का अर्थ है कि मन चोरी कर रहा है, इसलिए मनन क्रिया के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, यानी कि एकांत में अपने से बात कीजिए, अपने आप सोचिए। सत्संग के फलस्वरूप साधु संगत में मन अच्छी बातों को लेकर चिंतन करता ही है, इसलिए मानसिक उन्नति हो जाती है। और मानसिक उन्नति का मतलब है पूरे मनुष्य की उन्नति।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जिस बच्ची को जिंदा दफना दिया गया, वो काल बेलिया की पहचान बन गई। सोचिए, एक नन्ही सी बच्ची दुनिया में आती है, लेकिन उसके पैदा होते ही फैसला हो जाता है, ये तो लड़की है, और उस बच्ची को जिंदा जमीन में दबा दिया जाता है। अब आप सोचिए, अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो क्या होता? शायद दुनिया कभी उस बच्ची का नाम भी नहीं जान पाती। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, वो बच्ची जिंदा निकली, बड़ी हुई, नाची, और एक दुनिया ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया। नाम गुलाबो सपेरा। और आज की बातें इधर की उधर की सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, एक जिंदगी के दोबारा लिखे जाने की कहानी है। गुलाबो सपेरा का जन्म राजस्थान के कालबेलिया समुदाय में हुआ था। जब वो बहुत छोटी थीं, तो उनके परिवार के कुछ लोगों ने उन्हें लड़की होने की वजह से जिंदा जमीन में दबा दिया, लेकिन उनकी माँ और मौसी ने उन्हें वापस निकाला और वो बच गई। जरा एक पल के लिए इस बात को बस महसूस कीजिए, जिसे दुनिया में रहने का मौका तक नहीं दिया गया, उसी ने बाद में अपनी कला से दुनिया में अपनी ऐसी जगह बनाई कि वो मिसाल बन गई। क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या फिर जिंदगी की वो जिद थी जो कह रही थी कि अभी कहानी बाकी है? गुलाबो के पिता सपेरे थे। वो बीन बजाते और सांपों के साथ प्रदर्शन करते। गुलाबो बचपन से ही सांपों के बीच पली बढ़ी। उन्होंने देखा कि सांप कैसे लहराता है, कैसे अपने शरीर को मोड़ता है, कैसे बीन की धुन के साथ हिलता है, और गुलाबो ने भी उसी लचक और उसी गति को अपने नृत्य में उतारना शुरू किया। उनके लिए नाच शायद कोई अलग से सीखी हुई चीज नहीं थी, वो उनके आसपास की जिंदगी का हिस्सा थी। एक और मुश्किल थी यहां, उनके समुदाय में लड़कियों का इस तरह सबके सामने नृत्य करना स्वीकार नहीं किया जाता था। लोगों ने उनके पिता से सवाल किए, गुलाबो को रोकने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन उनके अंदर एक बात बहुत साफ थी, मुझे नाचना है। कितनी छोटी सी बात लगती है ना, मुझे नाचना है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी इच्छा को भी जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। अब आप सोच के देखिए कि आप कितने लकी हैं इस मामले में, और उस ब्लेसिंग को काउंट कीजिए। फिर आया साल 1984, पुष्कर का मेला, और गुलाबो ने वहां नृत्य किया। राजस्थान टूरिज्म से जुड़ी अधिकारी तृप्ति पांडे और हिम्मत सिंह ने उन्हें देखा। उन्हें मंच पर घुंघरू के साथ नृत्य करने का मौका मिला, और जब लोगों ने ताली बजाई
गुलाबों को अजीब सा लगा, क्योंकि वो सिक्कों की आवाज से परिचित थी, तालियों की आवाज से नहीं। कितनी खूबसूरत बात है ये, कभी कभी जिंदगी में पहली बार मिलने वाली ताली हमें यही बताती है, हाँ तुम जो कर रही हो उसकी कीमत है। उसके बाद गुलाबों की कला राजस्थान से बाहर निकली, दिल्ली तक पहुंची। उनकी मुलाकात कला संसार के लोगों से हुई, उन्हें बड़े मंचों पर प्रदर्शन करने का मौका मिला, और धीरे धीरे उनका नाम काल बेलिया नृत्य के साथ पहचाना जाने लगा। उन्होंने देश के बाहर भी प्रदर्शन किए और डेनमार्क और फ्रांस में भी नृत्य सिखाने का काम किया। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सरकारी पद्म अवार्ड्स में उनका नाम 8 राजस्थान के अंतर्गत दर्ज है। सोचिए, जिस बच्ची के लिए कभी कहा गया था कि वो जीने के लायक नहीं है, उसी बच्ची के नाम के सामने एक दिन पद्मश्री लिखा गया। लेकिन गुलाबों की कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा शायद ये भी है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं नाचा, वो आज भी कालबेलिया और राजस्थान की लोक कला को आगे बढ़ाने और बच्चों खासकर की लड़कियों को सिखाने पर जोर देती हैं। उनकी इच्छा रही है कि लड़कियां कला सीखें, अपनी परंपरा को समझें और अपने पैरों पर खड़ी हों। यानी जिस जिंदगी को कभी रोक दिया गया था, उसी जिंदगी ने दूसरी लड़कियों के रास्ते खोलने शुरू किए। अब सवाल आपसे, अगर आपके सामने किसी बच्चे के लिए दुनिया कहे ये नहीं कर सकता, ये लड़की है इसे ये नहीं करना चाहिए, इसके बस की बात नहीं है, तो क्या आप भी वही मान लेंगे या उस बच्चे से कहेंगे कि एक बार करके तो देखो। कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं होता, बस उस पर यकीन करना होता है। और गुलाबो सपेरा की कहानी हमें एक और बात बताती है, कला सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कला पहचान भी होती है, कला रोजी भी हो सकती है, और कला अपनी परंपरा को जिंदा रखने का एक जरिया भी हो सकती है, एक जद्दोजहद भी हो सकती है। और कभी कभी कला एक ऐसी आवाज बन जाती है जो उन लोगों की कहानी दुनिया तक ले जाती है जिनकी आवाज कभी सुनाई ही नहीं दी या सुनाई ही नहीं गई। काल बेलिया के लहराते हुए हाथ, घूमता हुआ शरीर, घुंघरू की ताल और सांप की तरह लचकता हुआ ये नृत्य, ये सब सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं, इसके पीछे पीढ़ियों की जिंदगी है। तो अगली बार जब आप काल बेलिया देखें, सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखें, उसके पीछे की कहानी भी याद रखिए। एक बच्ची जिसे जिंदगी ने पहली सांस लेने से पहले ही रोक देना चाहा, एक पिता जो उसे अपने साथ लेकर चला, एक लड़की जिसे नाचना था और एक मंच जहां पहली बार ताल मिली, और फिर एक पूरी दुनिया जहां उसकी कला की पहचान बनी। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की ये कहानी ओनली ऑन बातें इधर की उधर की, सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 एफएम पे। आज की कहानी से बस इतनी सी बात साथ ले जाइए, कभी किसी की शुरुआत देखकर उसकी पूरी कहानी का फैसला मत कीजिए, क्योंकि जिसे दुनिया ने कभी खत्म समझ लिया हो जरूरी नहीं कि उसकी कहानी वहीं खत्म हुई हो। कभी कभी वही कहानी एक घुंघरू बांध कर दुनिया के सामने नाचती है और पद्मश्री लेकर आती है। नमस्कार।

0: अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: एक प्रोफेसर ने क्लास में पूछा प्यार क्या है। एक जेंजी लड़के ने कहा प्यार मतलब जब तक वाईफाई चल रहा है तब तक कनेक्शन है, वाईफाई गया तो सर्चिंग। पूरी क्लास हंस पड़ी। प्रोफेसर ने कहा तुमने गलत नहीं कहा, साइकोलॉजी में इसको अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। कहानी 1950 से शुरू होती है। एक साइंटिस्ट थे जॉन बॉलबैक। उन्होंने देखा कि बच्चे अपनी माँ से कैसे चिपकते हैं। उन्होंने तीन टाइप के बच्चे देखे। पहला वाला सिक्योर वाला बच्चा, माँ गई तो थोड़ा रोया, वापस आई तो खुश हो गया, उसको पता था माँ आएगी। बड़ा होके ये बंदा सिक्योर लवर बनता है। मैसेज सीन नहीं हुआ तो सोचता है बिजी होगी, शाम को बात कर लेंगे। दूसरा वाला एंशियस वाला बच्चा, माँ गई तो बहुत रोया, वापस आई तो छिपक गया, गुस्सा भी किया, कहा गई थी बड़ा होके ये एंशियस लवर बनता है। ये वो है जो हर 10 मिनट में देखता है ऑनलाइन है पर रिप्लाई नहीं किया। लास्ट सीन 2.34, इसको हर टाइम प्रूफ चाहिए कि तू मेरा है ना। तीसरा वाला अवॉइडेंट वाला बच्चा, माँ गई तो रोया ही नहीं, जैसे फर्क ही नहीं, वापस आई तो देखा भी नहीं। ये बच्चा सीख गया था रोएंगे तो कोई नहीं आएगा, इसलिए स्ट्रांग बनो। बड़ा होके ये अवॉइडेंट बनता है। प्यार चाहिए पर आते ही डर लगता है, इसलिए बोलता है मुझे स्पेस चाहिए, मुझे काम है, क्लिंजी मत बनो। अब जेंजी में क्या हुआ, एंशियस को अवॉइडेंट से प्यार हो गया। एंशियस वाला सोचता है मैं उसको और प्यार दूंगा तो वो रुक जाएगा। अवॉइडेंट वाला सोचता है वो और चिपकेगा तो मैं और भागूंगा। एक लड़की एंशियस थी, एक लड़का अवॉइडेंट था। दोनों को सच में प्यार था पर दोनों को वाईफाई का पासवर्ड अलग अलग था। लड़की रात को 1 बजे मैसेज करती, सो गए। लड़का सुबह 11 बजे रिप्लाई करता, हाँ बिजी था। लड़की का दिमाग रात भर, क्या मैं बोरिंग हूं। लड़की का दिमाग इतना प्रेशर क्यों दे रही है, एक दिन लड़की प्रोफेसर के पास गई, रोई। प्रोफेसर ने कहा, बेटा तुम चार्जर हो, वो 100% बैटरी वाला फोन है, तुम सोचती हो और चार्ज करने से वो और चलेगा, पर वो सोचता है ज्यादा चार्ज करने से बैटरी फूल जाएगा। तुम्हें अपना अटैचमेंट ठीक करना होगा। एंशियस लोगों का एक रूल है, जब डर लगे तो और पास नहीं, थोड़ा पीछे जाओ। खुद को बोलो, मैं ठीक हूँ, उसके रिप्लाई से मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। अपनी लाइफ में अपना काम, अपना दोस्त, अपनी चाय वापस लाओ। और अवॉइडेंट वालों के लिए, जब प्यार पास आए तो भागो मत, 5 मिनट रुको, बोलो मुझे डर लग रहा है पर मैं यही हूँ। 6 महीने बाद लड़की वापस आई, उसने कहा, सर अब मैं सिक्योर बन रही हूँ, मैसेज का रिप्लाई आए ना आए मैं अपनी किताब पढ़ लेती हूँ। अजीब बात है, जब से मैंने छिपकना बंद किया वो खुद पास आने लगा। प्रोफेसर ने हंस के कहा, क्योंकि प्यार वाईफाई नहीं होता, प्यार चार्जर है, वाईफाई दूर जाते हैं चला जाता है, चार्जर पास रहता है तो अपने आप 100% कर देता है। ये सीख ये है कि प्यार में नेटवर्क नहीं, बैटरी देखो, जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा चार्ज करे और तुम्हारे बिना भी तुम्हें सिक्योर रखे, वही सिक्योर है। एंशियस और अवॉइडेंट दोनों ठीक हो सकते हैं, बस अपना पैटर्न पहचानो।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अचानक वाईफाई बंद हो गया है, चेक किया तो पता चला पड़ोसी ने बिल नहीं भरा था 2 महीने से वाईफाई का, इंटरनेट का। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं।

जिस कला का नाम बच गया, उसकी औरतों की कहानी कहाँ गई? कभी आपने भरतनाट्यम देखा है? घुंघरू की आवाज, हाथों की मुद्राएं, चेहरे के भाव और एक ऐसी कहानी जो बिना एक शब्द बोले कह दी जाती है। लेकिन आज मैं आपसे भरतनाट्यम के नृत्य की कहानी नहीं, उसके पीछे छुपी हुई औरतों की कहानी की बात करना चाहती हूँ। जब हम किसी कला को याद रखते हैं, तो क्या हम उन लोगों को भी याद रखते हैं जिन्होंने उस कला को जिंदा रखा? जरा सोचिए। आज भरतनाट्यम दुनिया भर में सीखा जाता है, बड़े बड़े मंच हैं, नृत्य विद्यालय हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस कला की कहानी सिर्फ मंच से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ों का एक गहरा संबंध सादिर नाम की एक नृत्य परंपरा से आता है, जो मंदिरों में और दरबारों की परंपरा में विकसित हुई और इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी संभालने वाली महिलाओं में देवदासी समुदाय की महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। यानी जिन पैरों में घुंघरू थे, उन पांव ने सिर्फ नृत्य नहीं किया, उन्होंने पूरी कला को संभाला। अब जरा एक देवदासी की तस्वीर अपने मन में बनाइए। वो सिर्फ मंदिर में नृत्य करने वाली महिला नहीं थी, परंपराओं के अलग अलग दौरों और स्थानों में उनकी भूमिका अलग अलग रही। लेकिन कुछ देवदासी परंपराओं में महिलाओं को संगीत, नृत्य, कविता और अन्य कलाओं की शिक्षा मिलती थी। कुछ के पास संपत्ति या भूमि से जुड़े हुए अधिकार भी थे। और सबसे खास बात, ज्ञान सिर्फ गुरु से शिक्षा तक नहीं, कई जगहों में मां बेटी तक भी पहुंचता था। सोचिए, एक मां अपनी बेटी को सिर्फ घर का काम नहीं सिखा रही, वो उसे दे रही है सुर, ताल, नृत्य, परंपरा और याददाश्त। फिर बेटी आगे उसे किसी और को देती है और फिर उसके बाद वाली पीढ़ी को। यानी कैसी महिला परंपरा जिसमें कला का ज्ञान आगे बढ़ता रहा, निरंतर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इतिहास हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलता, समय बदला, राज दरबारों का सहारा कम हुआ, मंदिरों और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं की सामाजिक स्थिति भी बदली और देवदासी परंपरा को लेकर समाज और कानून दोनों में बड़े बदलाव आए। इस बदलाव के बीच एक बहुत गहरी बात हुई। जो महिला कभी कला की संरक्षक थी, उसकी पहचान धीरे धीरे सिर्फ उसके शरीर और उसकी सामाजिक स्थिति तक सीमित होकर रह गई। और यहीं से कहानी थोड़ी कड़वी हो जाती है। सोचिए, आपने सारी जिंदगी एक कला सीखी, आपको संगीत आता है, नृत्य आता है, कविता आती है, आपकी परंपरा पीढ़ियों पुरानी है। लेकिन एक दिन लोग आपकी पूरी पहचान को सिर्फ एक शब्द में समेट देते हैं और उस एक शब्द के पीछे आपका ज्ञान छुप जाता है, आपकी कला छुप जाती है, आपका योगदान छुप जाता है। यही वजह है कि इतिहास को सिर्फ क्या हुआ से नहीं, किसने सहा, किसने संभाला और किसकी आवाज लिखी गई, इन सभी से भी समझना बहुत जरूरी है। और फिर आती है भरतनाट्यम के पुनर्जागरण की कहानी। 20th सेंचुरी में जब इस कला को नए रूप में मंच पर लाने और समाज के सामने नए तरीके से पेश करने की कोशिश हुई, तो एक अजीब सवाल खड़ा होता है। जिन लोगों के पास कला थी, उनसे कला सीखी किसने? बहुत बार जवाब था,
देवदासी कलाकारों से। उनमें से एक नाम है मायलापोर गौरी अम्मा, जिन्हें आगे चलकर कई प्रमुख नर्तकियों को परीक्षण देने वाली महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में याद किया गया। यानी जिस महिला की अपनी कहानी को शायद उतनी जगह नहीं मिली, उसकी कला आगे चलकर बड़े मंचों पर पहुंची। थोड़ा रुक कर इस बात को महसूस कीजिए। कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है, शिष्य मशहूर हो जाता है, गुरु का नाम धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है, कला बच जाती है, कलाकार भूला जाता है, परंपरा बच जाती है, परंपरा को संभालने वाले लोग पीछे छूट जाते हैं। और शायद इसीलिए हमें बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। एक और सवाल आपसे, अगर आप किसी खूबसूरत इमारत को देखें तो क्या सिर्फ उसकी तस्वीर याद रखेंगे या उन मजदूरों को भी जिन्होंने उस इमारत को बनाया? बस वही सवाल कला के साथ भी पूछना है। जब हम भरतनाट्यम देखें तो घुंघरू की आवाज के साथ उन पीढ़ियों को भी याद करें जिन्होंने उस ताल को अपने खून पसीने और जीवन से जिंदा रखा। और यहां एक और सुंदर बात आती है, किसी कला को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मंच नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए याद। और याद का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं, उस पूरी कहानी को याद रखना, जो शायद आसान नहीं थी। जिन महिलाओं ने नृत्य किया उन्हें सिर्फ नृत्यांगना कहकर छोड़ देना काफी नहीं है, उनके ज्ञान को समझना होगा, उनकी परंपरा को समझना होगा और ये समझना होगा कि समय और समाज के बदलाव ने उनकी जिंदगी को किस तरह से बदल दिया। तो अगली बार जब आप भरतनाट्यम का कोई प्रदर्शन देखें और घुंघरू की पहली झंकार सुनाई दे तो एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ये ताल कितनी पीढ़ियों से चलकर यहां पहुंची होगी, कितनी माओं ने अपनी बेटियों को सिखाया होगा, कितनी महिलाओं ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, कितने नाम इतिहास के पन्ने में आए और कितने नाम वहीं रह गए जहां पन्ने कभी पलटे ही नहीं गए। शायद इतिहास को पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि हम पुराना समय बदल दें, मतलब सिर्फ इतना है जो कहानी अधूरी सुनाई गई है उसे थोड़ा ध्यान से सुने। भरतनाट्यम आज भी मंच पर जिंदा है, हर मुद्रा में, हर भाव में, हर ताल में एक लंबी परंपरा की गूंज है और उस गूंज में उन महिलाओं की आवाज भी है जिन्हें हमने शायद बहुत देर से सुनना शुरू किया या शायद सुना ही नहीं। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की ये बातें इधर की उधर की एक और कहानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो दांतिया भील 90.8 FM पे। आज की आखिरी बात, कला को सिर्फ देखना नहीं होता, उसके पीछे की कहानी को सुनना होता है, क्योंकि कभी कभी मंच पर जो कला दिखाई देती है उसके पीछे कई ऐसे नाम होते हैं जो मंच तक कभी पहुंच ही नहीं पाते।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: घर वाले मुझे सुबह सुबह रोज ऐसे उठाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, मैं एक अकेला सैनिक बचाऊं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है हाथी।

0: अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष धीरा घोष, अनुपमा मेघा, दीक्षा संस्कृति राशि और अनुराग, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दुनिया की क्या हालत है दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है,

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: ये वीर गाथा है भारत माँ की मिट्टी के सपूत
4: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। उन्हें सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण शौर्य और पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: ये वो बहादुर सैनिक थे जिनकी बहादुरी की चर्चा दुश्मन के गलियारों में भी बड़े सम्मान से होती थी।
4: तो आइए सुनते हैं मित्रों कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
5: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।

0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथु सिंह निशाना साधो।
5: ठीक है जी।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। जो मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, क्यों क्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा।

हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: ओले बोले।
2: अरे ये क्या, बच्चे कहाँ चले गए?
3: बच्चे
2: आए भी हैं या नहीं आए? एक काम करता हूँ, बाहर चलकर देखता हूँ। अरे अरे अरे अरे अरे बच्चों, तुम यहाँ छुपे थे? तुम यहाँ छुपे बैठे हो हैं? आपने मुझे पकड़ लिया। लेकिन ये तो बताओ, क्या मैं चोर हूँ? है? है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब छोड़ो तो भाई, अब बैठ तो जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। आज मेरे अक्षर हैं ओ और ओ। ओ ओ
4: ओ ओ,
2: एक बार फिर ओ ओ
4: ओ ओ।
2: शाबाश। तो आज की मेरी कहानी का नाम है ओले बोले के औजार। ओले बोले के
4: औजार।
2: शाबाश। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओले बोले के औजार। शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी। कौन था?
4: व्यापारी।
2: अच्छा ये बताओ, व्यापारी होता कौन है?
5: वो सामान बेचता है।
2: सामान बेचता है,
6: जो चीजें बेचता है।
2: चीजें बेचता है, तरह तरह की चीजें।
7: वो साड़ी बेचता है।
2: साड़ी बेचता है।
8: वो लड्डू बेचता है।
2: लड्डू बेचता है।
9: वो खाना भी बेचता है।
2: खाना बेचता है।
10: वो लोहा बेचता है।
2: लोहा बेचता है।
11: वो बर्तन बेचता है।
2: बर्तन बेचता है। हाँ बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो व्यापार करता है उसे कहते हैं हम व्यापारी। क्या कहते हैं?
4: व्यापारी।
2: शाबाश। तो बच्चों, एक था व्यापारी, उसका नाम था ओले बोले। क्या नाम था?
4: ओले बोले।
2: वो बहुत सारी चीजें बेचता था, जैसे कपड़ा, बर्तन, औजार। ओ से ओले बोले और ओ से औजार। अच्छा औजार पता है ना क्या होता है? बताओ बताओ।
12: प्लास,
2: कीले,
13: पेचकस,
2: आरी,
14: हथौड़ी।
2: हथौड़ी, अरे वाह क्या बात है भाई, हमारे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। सही कहा तुमने। हाँ इसके अलावा वो और भी कुछ बेचता था, बताऊं क्या क्या?
15: क्या भैया?
2: वो ओखली बेचता, और वो भी दो दो मूसल के साथ।
15: ये ओखली क्या होता है?
2: ओखली बेटा जिसमें मसाला कूटते हैं। हाँ ऐसे धम
4: धम
2: धम धम धम। हाँ
4: धम धम।
2: तो बच्चों वो ओखली बेचता दो दो मूसल के साथ, और हाँ साथ में लाल गुलाबी लहंगा भी बेचता था, जिसके साथ चार चूड़ियां भी होती।
16: बिल्कुल मुफ्त।
2: हाँ, बिल्कुल वो
17: गोलगप्पे के साथ पानी।
2: तो बच्चों बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब मैं आगे कहानी
4: सुनाऊं?
2: हाँ तो सुनो कहानी। एक बार बच्चों हुआ ये कि ओले बोले की दुकान पर एक औरत आई। शाबाश। ओ से औरत। तो बच्चों वो औरत ओले बोले से बोली,
18: अरे ओले बोले भैया, एक ओढ़नी दिखा दो जिसमें मोर बने हो।
19: भैया ओ से ओढ़नी।
2: ओ से ओढ़नी। ओ से ओले बोले। हाँ तो ओले बोले ने उस औरत से कहा,
18: हाँ हाँ बहन जी, हाँ अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये लाल, ये हरी, ये पीली, और ये लो एक और, ये है नीली।
2: तो ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले बोले और ओ से
4: औरत,
2: औरत और ओ से और। तो बच्चों आगे सुनो क्या हुआ। तभी वहां पर एक बूढ़े बाबा आए और बोले,
20: अरे बेटा बेटा।
18: हाँ बाबा कहिए।
20: बेटा क्या यहाँ मेरी दवा मिलेगी?
2: तब ओले बोले ने कहा, अरे बाबा मैं औषधि नहीं बेचता। औषधि यानी
4: दवाई।
2: दवाई। वाह क्या बात है, इसी बात पर हो जाए ताली जोरदार भाई। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम सब बहुत ही होशियार हो, बहुत ही प्यारे हो और बहुत ही समझदार भी हो। अब आगे सुनाऊं कहानी?
4: हाँ भैया।
2: तो सुनो कहानी। तो बच्चों ओले बोले ने कहा, बाबा जी ये दवा वहाँ सामने वाली दुकान पर मिलेगी। हाँ वहाँ जाइए आप।
20: अच्छा बेटा,
3: मैं केमिस्ट से ले लूंगा।
2: केमिस्ट से ले लूंगा। वाह क्या बात है, केमिस्ट कौन होता है बताओ? जो दवाई बेचता है, जो दवाइयाँ बेचता है। हाँ पता फिर क्या हुआ?
5: क्या हुआ?
2: तभी वहाँ पर दो आदमी आए, पता उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे ओंकार और ओम। ओंकार और ओम, ओ से
5: ओंकार।
2: शाबाश, ओ से ओंकार, ओ से ओम और ओ से और ओंकार और ओम। अच्छा पता है वो दोनों क्या करने लगे?
5: क्या करने लगे भैया?
2: वो दोनों औने पौने पैसे देकर सारा सामान मांगने लगे। ओ से ओम,
3: वो चोरी कर रहे थे।
2: हाँ चोरी समझ लो, चोरी और सीना चोरी। ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से औने पौने। औने पौने यानी उल्टे सीधे, ठीक है बच्चों? तो कभी वो कहते
20: ओले बोले हमें 2 रुपए में ओखली दे दो,
2: और वो भी दो दो मूसल के साथ।
20: हाँ, 1 रुपए में हथौड़ी दे दो, जल्दी करो जल्दी करो।
3: 1 रुपए में साड़ी दे दो।
2: हाँ।
3: 1 रुपए में बर्तन दे दो,
2: बर्तन दे दो।
3: 1 रुपए में कुल्हाड़ी दे दो,
2: 1 रुपए में कुल्हाड़ी। फिर पता क्या हुआ?
3: क्या हुआ भैया?
2: हाँ वही तो बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। वो एक एक कर सारे औजार निकलवाते और कहते
20: ये सामान तो बेकार है। अरे बिल्कुल बेकार है भैया, तुम्हारे पास सारी चीजें बेकार है, कोई भी ढंग की नहीं है यहाँ पर। हाँ
3: ये तो बहुत बुरी बात है,
2: बहुत बुरी बात है,
6: बहुत बुरी बात है,
7: बुरी बात है।
2: तंग करना उससे भी बुरी बात है,
3: वो अच्छा नहीं कर रहे,
2: बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे।
3: क्या हुआ भैया?
2: बताता हूँ। फिर उनमें झगड़ा होने लगा, मार पिटाई शुरू हो गई। ओहो,
3: ओहो
2: शाबाश। तो उनमें बच्चों खूब धक्का मुक्की हुई। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये ले, और ले, अरे क्यों मार रहे हो?
20: अरे
2: बच्चों उनमें इतनी धक्का मुक्की हुई कि तभी ओले बोले, ओंकार और ओम तीनों औंधे मुंह गिरे जमीन पर धड़ाम।
3: बहुत चोटें लगी।
2: हाँ बहुत चोटें भी लगी होंगी। हाँ
3: और उनको बहुत दर्द हुआ,
2: बहुत दर्द
3: हुआ, फट गया, वो घायल हो गए।
2: घायल हो गए, बिल्कुल सही।
3: और भैया औंधे।
2: हाँ तो उसके बाद बच्चों हुआ ये कि वो जो औरत ओढ़नी लेने आई थी ना,
3: हाँ भैया,
2: वो वहीं पर खड़ी थी और ये झगड़ा देखकर उसने तुरंत
3: पुलिस को फोन कर दिया।
2: हाँ बिल्कुल सही, उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई तो पुलिस को देखकर ओम और ओंकार डरकर सरपट भागे, लेकिन पुलिस की आंखों से ओझल नहीं हो पाए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। तो बच्चों ओ से ओझल, ओ से ओढ़नी, ओ से ओम, ओ से ओंकार और ओ से ओले बोले, ओ से औरत, ओ से औजार और ओ से औंधे। हाँ बच्चों बात दरअसल ये थी कि ओले बोले इतने अच्छे औजार बेचता था कि ओम और ओंकार उन्हें लेना तो चाहते थे पर पैसे देना नहीं चाहते थे।
3: ये तो बहुत बुरी बात है,
2: बहुत बुरी बात है, सच
3: में। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें पैसे देकर चीज खरीदनी चाहिए,
2: बिल्कुल सही, बिल्कुल
3: हमें ईमानदार होना चाहिए,
2: बिल्कुल सही, ईमानदार होना चाहिए।
3: और चोरी कभी नहीं करनी चाहिए,
2: नहीं करनी चाहिए,
3: बुरी बात होती है,
2: बहुत बुरी बात होती है। शाबाश। तो बच्चों अब हुआ ये कि ओम और ओंकार को पुलिस ने पकड़ लिया और ओले बोले अपने औजार फिर से बेचने लगा और बाकी चीजें भी आराम से बेचने लगा।
3: और हथौड़े और कील और पेचकश और औजार बेचने लगा,
2: औजार बेचने लगा,
3: और ओढ़नी और चूड़ी और पेच,
6: ओढ़नी और चूड़ी,
2: ओढ़नी और चूड़ी
3: और साड़ी भी,
2: साड़ी भी, बर्तन
3: और पेच भी,
2: पेचकश भी, कपड़े
3: और आरी,
2: आरी। शाबाश। हाँ तो बच्चों उसके बाद ओले बोले ने उस औरत का धन्यवाद किया और कहा
20: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे आज बचा लिया।
18: अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था।
20: रुकिए रुकिए, आप ये खुरपी लीजिए मेरी तरफ से।
18: अरे मगर चलो ठीक है, मुझे खुरपी लेनी भी थी। धन्यवाद ओले बोले, धन्यवाद।
2: तो बच्चों, ओ से ओले बोले और ओ से औजार। ओ औ,

0: तभी वहाँ दो आदमी आए, ओंकार और ओम था नाम। औने पौने पैसे देकर मांग रहे सारा सामान।
1: ला दे ओखली, दे मूसल, सारे औजार दे।
2: अरे इतना घटिया सामान कौन देगा तुझे इसके दाम?
0: कभी वो मांगे ओखली मूसल, एक एक करके सारे औजार। बार बार देखे और बोले, ये सामान है बेकार।
3: खूब हुई धक्का मुक्की और बोले बोले गिरा घड़ा। तब औरत ने पुलिस बुलाई, भागी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: कितना हल्का कितना भारी,
2: कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते।
4: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
5: हमें आज कहानी भी तो सुननी है। भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
4: हाँ, ये बात है।
6: आनंद, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
4: बढ़िया हो ना?
6: तो अनंत, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
4: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
4: हाँ।
5: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा, अच्छा? बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे?
4: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
5: घोड़ा।
4: हाँ।
5: घोड़ा थे।

0: होता था।
1: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
2: 700 किलोग्राम?
1: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
3: 700 किलोग्राम?
1: हाँ।
3: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
1: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था
4: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
1: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
3: वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
1: लेकिन बच्चों ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
3: फिर क्या हुआ?
4: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
1: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा,
5: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
1: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
6: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
7: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
8: अरे बेटा ले आ ले आ।
1: और घोड़ा कहने लगा,
7: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
8: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं।
4: और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
1: तब घोड़ा बोला,
7: अरे इतना भार।
4: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने एक बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
1: और बच्चों घोड़ा बोला,
7: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
3: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
4: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
1: जैजू मन्नू।
7: जी पिताजी।
9: जी पिताजी।
8: भाई लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
3: वो बहुत भारी हो गया था
10: क्या? वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
4: अरे रुको रुको। पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
1: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
2: ठीक है।
1: तो एक गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम।
2: 100 किलोग्राम?
1: हाँ। और एक चावल की बोरी और 1 अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
2: 105 किलोग्राम?
4: तो बच्चों बताओ कुल कितना भार हुआ, 100 और 105 किलोग्राम?
2: 205।
1: 205 क्या?
2: ग्राम।
1: सिर्फ ग्राम?
2: किलोग्राम।
1: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। एक कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
2: 5 किलोग्राम।
1: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
2: 205 किलोग्राम।
1: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ, तो भाई अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
2: कितना है?
1: 50 किलोग्राम।
2: 50 किलोग्राम?
1: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
2: 235 किलोग्राम।
1: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
2: 260 किलोग्राम।
1: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
10: 270 ग्राम।
1: किलोग्राम।
10: किलोग्राम।
1: शाबाश, ये हुई ना बात। किलोग्राम। शाबाश।
4: और अब बारी आती है गद्दे की।
1: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
2: 290 किलोग्राम।
1: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
4: बहुत होशियार।
1: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
4: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ?
1: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
2: 300 किलोग्राम।
4: ठीक बताया।
1: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना। तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
2: 310 किलोग्राम।
1: हाँ 310 किलोग्राम।
4: वाह वाह वाह। तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
1: क्या बात है।
4: तो बच्चों अब ये बताओ 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
2: कम।
1: बच्चों जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। थोड़ा शर्माने लगा और बोला,
0: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
10: मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा, मेरे को टांग भी नहीं दर्द।
0: अरे अरे ये तो बहुत ही हल्का है, अरे मैं अभी ले चलता हूँ। जैजू और मनु, अरे तुम भी बैठ जाओ घोड़ा गाड़ी पर, बैठ जाओ शाबाश। और हाँ सुनो सुनो, अरे पापा को भी तो बिठाओ। हाँ
10: मम्मी को भी तो बिठाओ।
0: अरे हाँ, अरे बुलाओ भाई मम्मी को भी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अब मैं सर पर दौड़ लगाता हूँ।
4: अरे अनंत रुको रुको रुको भाई, यही रोक दो अपनी घोड़ा गाड़ी को। कुछ और भी बाकी है।
1: अरे आकृति क्या बाकी है भाई?
4: आज का सवाल।
1: सही याद दिलाया तुमने। तो बच्चों आज का सवाल है 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है। सवाल एक बार फिर सुन लो, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है। तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
1: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
1: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
1: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
4: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
5: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
4: जी बताइए।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
4: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
4: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
4: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी,
4: और डॉक्टर साहब,
6: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
4: बताइए।
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
4: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है, हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
4: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता, इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
4: जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
3: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं।
4: जी।
6: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
4: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
4: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: हूँ से आरजे राकेश
7: अने हूँ से

करवानी तो इनाम देखी जाए किसान भाइयों, फसल नी हाते अक्सर जो खरपतवार जो दरोड़ी से एवं कई प्रकार ना खरपतवार ना झाड़का उगी जाए से अने आवश्यक पोषक तत्व अने पूरी तरह पौधा तक नी पुगवा दे से अने त्या वसमा तिनान खाई जाए से कई प्रकार नो आपन खातर आलिए त्या भी तिना ने निंद्रणी जो झाड़का से त्या तिनान खाई जाए से अने आपड़ा असली पौधा से टमाटर ना तिना पौधा ने त्या नी पनपवा दे। तेती नी हारू आपन किसान भाइयों ने समय समय पर निंदाई गुड़ाई करी ने

0: डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 दिनों तक किसान भाई इनाने आराम थी अवेरी सके, जहां पर तीनों 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 40 दिनों तक इनान रखी जा सके से। तो किसान साथियों 10 दिनों तक इनान रखी जा सके से। तो इनाने उपरोक्त भंडारण ना टाइम पर अपेक्षित आर्द्रता 65-70% तक इन्होंने रेवी जोई। तो किसान साथियों मैं आज तमोने टमाटर की खेती करवानी कई प्रकार की घनी एवी जानकारी हामलावियो अने एवी खेतीवाड़ी की असल असल जानकारी हामलवा हारू तमो हामलता रहेजो रेडियो टंटा भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज।
1: हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमो हामली रासे कार्यक्रम खेतीवाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो सालो किसान भाइयों हव हमलिया आपू आपड़ा झाबवा जिला मा आदिवासी समुदाय मा जब लाड लाडिया पैणे आने तीन मा जो गावे त्यू घणु मजानु आने असल गीत हमली ने पासा भेला था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। आज की मेहमान एक ऐसी डॉक्टर हैं जिनके लिए इलाज सिर्फ बीमारी को ठीक करना नहीं, बल्कि इंसान को समग्र रूप से स्वस्थ और संतुलित बनाना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर माया गोलीकेरे, पुणे की प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, पंचकर्मा कंसल्टेंट और चिरायु आयुर्वेद और पंचकर्मा क्लिनिक की फाउंडर। BAMS के साथ उन्होंने गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, थेरेपेटिक योगा, गर्भ संस्कार और आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी जैसे एरियाज में भी ट्रेनिंग ली है। 22 साल का उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस पंचकर्मा, योगा, नाड़ी परीक्षण, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और वुमेन्स हेल्थ तक फैला हुआ है। लेकिन डॉक्टर माया की जर्नी की एक और खूबसूरत पहचान है सेवा। जी हाँ, उनकी सेवा वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, ब्लाइंड गर्ल्स, लेबरर्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए वो हेल्थ को कम्युनिटी तक लेकर गई हैं, और उनकी एक्सपर्टीज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी मिला जब 2025 में वियतनाम में माइग्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पंचकोश और पंचकर्मा थेरेपीज के थेरेपेटिक एप्लीकेशन पर उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया। तो आज की बातचीत में हम सिर्फ आयुर्वेदा की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रेस, वुमेन्स हेल्थ, लाइफस्टाइल, माइंड बॉडी कनेक्शन और उस होलिस्टिक बैलेंस की जो शायद हम मॉडर्न लाइफ में कहीं बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आइए बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर माया का। तो डॉक्टर माया, आपका जिंदगी अनप्लग्ड के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज SN रेडियो पे आके और इतने इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सेगमेंट में आके?
2: थैंक यू तनुषा जी, आई एम रियली सो ग्रेटफुल, एंड यहाँ पे आपने रेडियो स्टेशन पे मुझे बुलाया है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका, जो ये NGO है, ये जो आदिवासी गण के लिए जो काम कर रहा है और ये कोशिश जो आपकी है वो जारी रहे, एंड इसके लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इन डेप्थ और बहुत गहरी बातें आज हम करेंगे। सिर्फ ऊपरी मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, हम अंदर तक जाएंगे सोल के, बॉडी के, कि कहाँ वो रूट होती है जहाँ हम एक्चुअली जाके इलाज कर सकते हैं। जिस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है, इतना रिच एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो डॉक्टर माया शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये है कि इतनी लंबी जो आपकी प्रैक्टिस रही है, 22 ईयर्स से आप इस प्रैक्टिस में हैं, तो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद जब आप अपने प्रोफेशन को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोगों की बीमारी है वो कहाँ लाई करती है, और क्या वो इलाज ढूंढ रहे हैं या वो एक्चुअली अपनी जिंदगी को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस सर्च में है लोग?
2: बराबर, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, एंड ये जो आपका ओपनिंग क्वेश्चन है वो बहुत ही गहरा है, मैं बताऊंगी आपसे। तो मैं आयुर्वेदाचार्य और पुणे में मेरी जो प्रैक्टिस है इसमें नाड़ी परीक्षण, डाइट, लाइफस्टाइल काउंसलिंग और पंचकर्म की मेरी 22 साल से ऊपर प्रैक्टिस है फिलहाल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुस्तस्य आयुर्वेदः। तो यह जो आयुर्वेद का एक परिभाषा है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हित है और जो अहित है, सुख है दुख है, वो सारी चीजें इस प्राचीन शास्त्र में इसका उल्लेख है। और यह सिर्फ ऊपरी ऊपर नहीं, यह जड़ तक जाता है। हर बीमारी को दूर करने के लिए जड़ तक वो बीमारी का जो मूल कारण है वह उसकी सोच वह गहराई तक है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि किसी को सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसका पेट दर्द या सिर दर्द कम करना है। वह सिर दर्द किस कारण से हो रहा है, जैसे कि पित्त की तकलीफ है या उनको साइनस की तकलीफ है या स्ट्रेस की वजह से है, तो यह जड़ से या इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आजकल लोग काफी गूगल से या बहुत सारी जानकारी लेते हैं, तो जानकारी लेना गलत नहीं है, बट खुद से खुद का इलाज करना, उसके ऊपर ज्यादातर अपना खुद का इलाज करते रहना, यह सही बात नहीं है। उन्होंने यह अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी प्रकृति है, उतनी उनकी प्रतिकार शक्ति है। और कोविड के बाद यह देखा गया है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत लोगों का बढ़ते जा रहा है, उनके जीवन शैली में वो बदलाव लाने की कोशिश हमेशा करते आए हैं और अभी ज्यादा करते हैं, क्योंकि जैसे कि उनकी सेहत का उनको थोड़ा ध्यान रख

0: ज्यादा चिंतित हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य के बारे में और इतना ज्यादा सोचते हैं कि अब क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, और फिर जो दो पल की खुशियों की जिंदगी है उसे भी जीना कभी कभी भूल जाते हैं। तो यह हमको मानसिक रूप से भी सोचना बहुत जरूरी है और उनका काउंसिलिंग करके यह जो फिजिकल एस्पेक्ट जो दिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर दर्द की तकलीफ है या और कोई है, तो वो अलग अलग लेवल पे जाके उनका मतलब इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सटीकता से आपने इस बात को सामने लेकर आई अपने एक्सपीरियंस से कि हर स्पेक्ट्रम के लोग हैं, कुछ जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और मौज में रहते हैं और कुछ इतना ध्यान देते हैं कि वो उस टेंशन से और स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, अपने हेल्थ की टेंशन से स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और एक हेल्थ हासिल ले आते हैं। तो बहुत एक खूबसूरत यस यस बहुत बहुत गहराई से ऑब्जर्व द आंसर निकल के आया है। आपके इतने सालों के जो अनुभव है उसका समावेश है, इतना कीन ऑब्जर्वेशन। और ये भी बात सही है कि कोविड के बाद से ही ये सी चेंज देखा गया है कि लोग ऊपरी मेडिसिन से ज्यादा, मतलब जैसे हम जनरली एलोपैथी के पे ही डिपेंडेंट थे, अब धीरे धीरे लोग आयुर्वेद पे वापस आ रहे हैं, रूट कॉजेस समझने की कोशिश कर रहे हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, जो बहुत अमेजिंग चेंज है और बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा है कोविड के बाद। तो बहुत ही नुआंस्ड मैम, अगर आगे चलूं और मैं पूछूं कि जो आपने जो विधाएं बताई कि पंचकर्म में योगा, नाड़ी परीक्षण और डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इन सबको आप साथ लेकर चलते हैं अपने हीलिंग प्रोसेस में, अपने अपने जो मेडिसिन का जो आपका अप्रोच करने का जो आपका तरीका है वो इन सबको साथ लेकर चलने वाला है। तो आपके हिसाब से अगर हम आज समझें तो आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस है शरीर का वो कहाँ से शुरू होता है, मन से या हमारी लाइफस्टाइल से?
0: बराबर, तो ये आपका जो सवाल है, तो पहली बात है इम्बैलेंस जो आप मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको एक ये बताना चाहूंगी ताकि लोग भी इसलिए समझ सके। तो पहली बात यह है कि शरीर और मन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर, मन और आत्मा, इनका संयोग जो है वही जीवन है। और जो जीव अपने मतलब जीव जब चला जाता है तो उसे निर्जीव कहा जाता है। तो शरीर और मन इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मन में अगर कोई मन चिंतित है कोई बात से, जैसे कुछ शोकाकुल हो जाता है, भयभीत हो जाता है, चिंतित है या निराश है, तो इसमें जो मन में चिंता उत्पन्न होती है उससे जो दोष या हम जहाँ पर बोलते हैं मन में तीन प्रकार के दोष या गुण बोले जाते हैं, जो सत्व, रज और तम है, उसी तरह अपने शरीर में त्रिदोष है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, उसे हम वात, पित्त और कफ बोलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से जब मन में दोष बढ़ जाते हैं, जैसे चिंता से पित्त ज्यादा बढ़ गया या रजोगुण बढ़ गया, तो अपने शरीर में भी उसका प्रभाव होता है, शरीर पे भी उसका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि चिंता से अपनी भूख जो है उस पे या अपने पाचन शक्ति पे, अपने अग्नि पे इसका परिणाम दिखाई देता है। और ये सारी चीजें जो शरीर और मन पे प्रभाव करती हैं, वो बहुत ही अपने जीवन शैली से निगड़ित हैं। जीवन शैली में होने वाली जो आजू बाजू की, जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे बोलते हैं, जो आजू बाजू की जो रोज के दैनंदिन जीवन में घटनाएं घटती हैं, उसका प्रभाव अपने मन पे और शरीर पे, शरीर पे भी अगर हो जाता है, जैसे कि अचानक से पेट का दर्द हो जाता है तो मन एकदम अस्वस्थ हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, हम अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसमें बोलना यह है कि दोनों में, यानी शारीरिक गुण और जो मानसिक गुण है, इन तीनों में भी जब ये दोष उत्पन्न होते हैं तो एक दूसरे पे प्रभाव करते हैं और इसी को इम्बैलेंस यानी हम असंतुलन बोलते हैं। और जब ये असंतुलन होता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यह समतोल बिगड़ने की वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और यह बहुत जरूरी है कि इनको हम संभालें, या ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी स्वस्थ की भाषा जो आयुर्वेद ने बताया है कि जैसे अगर ये दोष और त्रिगुण अगर अच्छे या समतोल स्थिति में है तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा दिखता है और वो चेहरे पे भी

0: दिखेगा, प्रसन्न दिखेगा चेहरा और मन भी शांत दिखेगा और यह शांत महसूस होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इन तीनों का ही एक समावेश है, आपके मन का, आपके शरीर का और आपकी आत्मा का। और वो सब आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करता है। कई लोगों के चेहरे पे तेज होता है जो मेडिटेट करते हैं,
0: बराबर
1: है ना, वो शायद इसीलिए ही आता है क्योंकि वो इतने सेंटर्ड हो जाते हैं करते करते करते योग।
0: मन की शांति बहुत रिफ्लेक्ट करती है अपने चेहरे पे और बहुत दिखाई देती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बट जैसे
1: आगे चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी मोड़ पे इन्हीं गहरी बातों के बीच में, इन्हीं विद इन की जो आपकी सोच है, विद इन की जो बॉडी की वेलनेस है, उन बातों के बीच में हम सुनेंगे आपका पहला फरमाइशी गीत, जो मेरा भी फेवरेट है, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग गाना है, मोह मोह के धागे फिल्म दम लगा के हईशा।
0: यस।

0: खूबसूरत गीत है ये, इसको सुन के ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में चले गए।
1: बहुत जी, बहुत चीज है मेरे लिए
0: जी। और हमने आपसे जाना है, आपको जितना मैंने जाना है, मैंने ये भी जाना है आपके बारे में कि आप गाते भी हैं। तो
1: थोड़ी बहुत कोशिश है, बहुत अच्छा नहीं बट थोड़ी बहुत कोशिश है।
0: जी जी, बहुत खूबसूरत कोशिश है, मैंने आपको सुना है। तो बिकॉज हम SNR पे इंटरव्यू कर रहे हैं और SNR का मेन जो सेगमेंट है, जो मेन हमारा USP है, वो है सिंगर्स को प्रमोट करना, उनके कराओके सिंगिंग को एक स्तर देना, एक प्लेटफॉर्म देना। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं आपसे बहुत मन से रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि कोई एक गाना हमारे लिए, भले ही थोड़ा सा, चार लाइन हमारे लिए गुनगुना दे।
1: ओके
0: जी जी, आगे चलते हैं मैम। माइग्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपने पंचकोश और पंचकर्मा थेरेपीज पर रिसर्च भी की है और पेपर प्रेजेंटेशंस भी की हैं और पेपर्स लिखे भी हैं काफी, बहुत इनडेप्थ रिसर्च आपकी रही है इन दोनों टॉपिक्स पे। तो कुछ तो आप हमें, हमारे श्रोताओं को पंचकोश और पंचकर्मा थेरेपीज के बारे में अगर बता सकें। और इसके अलावा आज जब स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ा एक इश्यू है मॉडर्न लाइफ का और एक कंपेनियन बन गया है, एक्चुअली हमारा परमानेंट कंपेनियन, कि हम हर समय स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें करते हैं, चाहे वो इन द हाउस हो या ऑफ द हाउस हो, घर पे हो या ऑफिस में हो। तो किस तरह से समझे हम स्ट्रेस को, कैसे डील करें, क्या वो माइंड का इशू है, बिकॉज ऑफकोर्स माइंड से ही जनरेट होता है, बॉडी को वो किस तरह से इफेक्ट करना शुरू करता है, किस तरह से स्ट्रेस आपको पूरी तरह जकड़ सकता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप बताएं।
1: यस, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि पहले तो स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी, मतलब एक बैकग्राउंड बताऊंगी कि ये जो स्ट्रेस या हम बोलते हैं तान तनाव, जो हम इसके बारे में बताऊंगी कि इसमें दो तरीके हैं। इसको गुड स्ट्रेस भी बोला जाता है, इसे यू स्ट्रेस बोला जाता है, जो क्षणिक रहता है, जैसे कि बच्चे अभी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या कुछ इंटरव्यू देना है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, या कोई भी चीज के लिए हम अभी जा रहे हैं या हमको कुछ लक्ष्य साध्य करना है, तभी ये यू स्ट्रेस जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो सोच है, उसे केंद्रित करने के लिए हमको इसकी मदद होती है, जिसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं अपना लक्ष्य साध्य करने के लिए। तो बट यही है कि जब चिंता करते रहते हैं, जैसे कि बच्चों के बारे में भी होता है, बड़ों के बारे में भी होता है, कि कोई भी चीज हो, कामकाज की वजह से हो, कोई लंबी बीमारी की वजह से हो, जब उनको बहुत सारा ये जो चिंता

0: की वजह से बार बार चिंतित रहना या उसकी वजह से जो नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं मन में या जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव थॉट्स की वजह से, और उनको उसकी वजह से माइग्रेन हो, अलग अलग बीमारियों से वो जकड़ जाते हैं। और यह बीमारी सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं रहती, कभी कभी वो शारीरिक स्तर पे भी उनको अफेक्ट करती है, क्योंकि ये मानसिकता शारीरिक स्तरों पे भी अलग अलग लेवल पे अफेक्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी किसी को चिंता की वजह से या मानसिक जो दोष है, सत्व रज तमा जिसके बारे में मैंने बोला, और अपनी जीवन शैली, जैसे उन्हें समय पे खाना पीना नहीं करना, समय पे सोना नहीं होता, या जो जीवन शैली की वजह से या बहुत देर तक बैठे रहना, तो इसकी वजह से जो वात पित्त कफ दोष, ये भी जो बिगड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनका पाचन संस्थान भी बिगड़ जाता है। तो उसमें ये सब देखा जाता है कि स्ट्रेस रिलेटेड इस पे भी परिणाम होता है। और जो हमारे पंच कोश हैं, जिसे हम बोलते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, तो ये अलग अलग स्तर या अलग अलग स्तरों पे या कोशों पे इसका परिणाम होता है। जैसे भूख पे परिणाम होता है, बहुत ज्यादा भूख लगना या बिल्कुल भी भूख नहीं लगना, श्वसन तेज हो जाती है कभी कभी, चिंता से ज्यादा विचार, नकारात्मक विचार, और बहुत ही मन दुखी हो जाता है और निराशा आ जाती है। तो निराशा में बहुत लोग कुछ व्यसन के अधीन भी हो जाते हैं, जो आजकल बहुत ही मतलब दिखाई दे रहा है कि धूम्रपान हो, मद्यपान हो, तो ये सारी चीजें और बहुत सारी, तो ये चीजें निराशा की वजह से भी स्ट्रेस कैसे उनको हैंडल कैसे करना, ये मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा है कि इन ऐसे लोगों में हम पंचकर्म का बहुत फायदा हो मतलब देखा है कि शिरोधारा या बाकी सब पंचकर्म थेरेपी जो है, अभ्यंग करना, शिरोधारा, पादाभ्यंग, और उसी तरह काउंसिलिंग करते हैं हम, यानी इसको हम सांत्वन चिकित्सा भी बोलते हैं आयुर्वेद में, कि पेशेंट का काउंसिलिंग करना बहुत जरूरी है, उनको इस चीज से बाहर लाने के लिए उनका मन परिवर्तन जो बोलते हैं या मन की बात, ये बहुत जरूरी है, ताकि उनके मन के विचार हम जान ले और पहचान के उनको सही मार्ग दिखाएं। तो इसके लिए शिरोधारा का भी बहुत अच्छा फायदा हमने देखा है कि उनके विचार चैनलाइज हो सकते हैं, और इसका फायदा भी हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है, और ये पंचकोश के लेवल पे भी बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दिया है। उसी तरह हम लोगों को कोई उनका जो उनको जो अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूजिक है, डांस है, नृत्य है, जो वो अच्छा लगता है, वो भी हम करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, जिससे वो अपने जीवन शैली में आत्मसात कर सके।
1: क्या बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, चिंता चिता है, तो
0: बराबर एग्जैक्टली
1: जी, मैं अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि चिंता तो हम सबको है, आज का जीवन ही हमने ऐसा बना लिया है अपने ही हाथों से कि हम इस चिंता से बच नहीं सकते, बट क्या आप कर सकते हैं वो ये सब है जो मैम ने अभी बताया। अपने पंचकोशों पे काम करिए, योग करिए, अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करिए, जो आपको चीजें खुशी देती है, म्यूजिक है, डांस है, कोई पेंटिंग है, उसको अपनी थेरेपी बनाइए, और किसी काउंसलर के पास जाइए अगर आपको वो स्ट्रेस है, आपको वो चिंता है, तो अपने आप नहीं डील कर सकते आप, कई बार हम नहीं केपेबल होते उसको डील करने के लिए, तो जो प्रोफेशनल हेल्प है उसे सीख करिए। ये मेरी श्रोताओं से बहुत हाथ जोड़कर विनती है, और इसी से हम आगे चलते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल है वुमेन हेल्थ को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वुमेन फोक की हमारे देश में स्पेसिफिकली आदत है कि हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे रखते हैं और खुद की हेल्थ को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, और ये रैम्पेंट है, मतलब मुझे लगता है 90% वुमेन हमारी कंट्री में आज भी ये कर रहे हैं। और अब बिकॉज वर्किंग क्लास हो गए हैं तो स्ट्रेस डबल हो गया है, घर का भी स्ट्रेस, वर्क का भी स्ट्रेस, और खुद के लिए कोई समय नहीं। तो आपके हिसाब से अगर आप इतने सारे जब वुमेन हेल्थ इश्यूज को डील करते हैं, इतना क्लोजली देखते हैं, तो सबसे पहला हेल्थ रूल एक महिला को अपनी हेल्थ के लिए क्या बनाना चाहिए?
0: तो मैं ये थोड़ी सी ऐसी शुरुआत करूंगी कि हेल्थ रूल के बारे में जब आप बात कर रहे हो, और जैसे कि हमको याद आता है कि रूल जब करते हैं तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिस तरीके से हम बताते हैं उसी तरह से महिला ने सोचना चाहिए कि आई शुड बी द फर्स्ट। ओके, सो यह बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है, महिला मेरे पेशेंट्स हो, मैंने देखा है घर पे काम करने वाली बाई हो या सहेलियां हो, कोई भी हो, तो ऐसे उनका ऐसे हमेशा रहता है कि नहीं आज मेरा ये काम है वो काम है, मैं ये पहले इसको प्रायोरिटाइज करूंगी या वो मेरी सारी चीजें हैं। तो खुद के बारे में खुद का जांच करना या पहले जो कुछ उनको अगर कुछ तकलीफ हो रही है तो उसके बारे में आके डॉक्टर से सलाह लेना, ये हमेशा वो मतलब इसको द्वितीय स्थान देती हैं। और कई बार ऐसे होता है कि खून की कमी हुई है, बहुत उनको महीने की तकलीफ हो रही है या बहुत थकावट आई है, कभी कभी बहुत मतलब माइग्रेन का इशू हो या परेशानी हो रही है, नींद ठीक से नहीं लग रही, बट ये हमेशा ऐसे डिले करते रहेंगे और ऐसे सोचते रहेंगे कि अभी बाद में देखेंगे, खुद की तकलीफ बाद में देखेंगे, बट ऐसे नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने खुद को मतलब अहमियत देनी बहुत जरूरी है। और मतलब उम्र के हर पहलू पे, जैसे लड़की है स्त्री को अपने खाने पीने का ध्यान रखना,

0: ये तकलीफ हो रही है, हेडेक हो रहा है, पर वो जाना नहीं चाहते या इसे डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेना चाहते सही समय पे। तो खुद का जांच सही समय पर करना और खुद का इलाज करना बहुत ही जरूरी है। और अपने काम को भी, मतलब जैसे वो काम को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसी तरह से खुद को अगर प्रायोरिटाइज करेंगे, खुद को पहला स्थान देंगे, तो वो अपना खुद का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य और प्रगति, इस सब में वह विकास कर पाएंगे और काम काज पे भी प्रगत रहेंगे। तो यह बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे क्लिनिक में भी जब वुमेन्स डे सेलिब्रेशन होता है साल में एक बार, मैं हमेशा वुमेन्स वीक ऐसे हर साल मार्च में रखती हूँ, जिससे मैं लोगों को हमेशा एक ऐसी तरह से, मतलब महिलाओं को पैकेज रहता है जिसमें अभ्यंग हो, शिरोधारा हो, तो ये लेने के लिए प्रेरित करती हूँ, जो उनके लिए अच्छा है, उनके सेहत के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्ट्रेस रिलीज करता होगा शिरोधारा, तो बेहतरीन एक एक्सपीरियंस है। मैंने एक ही बार किया है केरला में, बट ऐसा लगा जैसे मतलब सब इंद्रियां खुल गई, ऐसा लगा, इतना खूबसूरत अनुभव होता है वो। और इसमें दो मत नहीं है, बिल्कुल दो मत नहीं है कि आप महिला जो है अपने घर की धुर्री हैं, आपके अराउंड सब कुछ पिवटेड है, बट इसीलिए और बट नहीं एक्चुअली इसीलिए और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैम ने बताया कि फर्स्ट मी, सबसे पहले मैं मेरी प्रायोरिटी बनूंगी, तभी मैं बाकियों के लिए घर में कुछ कर सकती हूँ। वरना जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप कभी एक एम्प्टी कप से पोर नहीं कर सकते। अगर आप खुद भरे हुए नहीं हैं तो आप क्या किसी के लिए कर पाएंगे। ये सोच के चलिए, लॉन्ग टर्म सोच के चलिए, विजन रखिए, सिर्फ आप

0: एक और बेहतरीन गीत के बाद आगे चलेंगे। मैम आप बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक कामों में भी जुड़े हैं, ब्लाइंड गर्ल्स, वुमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स और लेबरर्स, इन सब के लिए आप हेल्थ कैंप्स करते हैं। तो मेरे दो क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं कि नेचुरली आप जब इन लोगों के साथ जाके काम करते हैं तो आपको क्या, एक तो सेटिस्फेक्शन किस तरह से होता है कि आपने एक्चुअली अपना जो पर्पस था टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ हीलर, वो इस लेवल पे जाके आप शेयर कर पा रहे हैं, वो क्या अनुभव होता है, और एज अ डॉक्टर आपको क्या सीख मिली जब आप इन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके पास अदरवाइज हेल्थ केयर कभी एक्सेसिबल नहीं होती, मतलब उनके लिए इट इज ऑलवेज अ लग्जरी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस है मैम?
1: या पहली बात है, यह एक्सपीरियंस बहुत ही सुकून देने वाला है क्योंकि मैंने देखा है कि रोटरी के थ्रू मैंने काफी सारे ये एक्टिविटीज कंडक्ट किए हैं, मतलब मैं उनके तरफ से गई थी और अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए हैं तो मैं कुछ आपसे शेयर करूंगी। पहली बात है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये जो लेबरर्स का, जैसे पहले मैं उनका जिक्र करूंगी कि वह खुद बहुत सारा मतलब काम करते रहते हैं और उनको इस परिस्थिति में भी जब हम उनका मतलब चेकअप करने जाते हैं, परीक्षण करना जाते हैं, तभी बातों करते हुए उनको जब इलाज का सब बताते रहते हैं तो यह वो बोलते हैं कि नहीं, हम हमारी तरफ भी ध्यान देंगे और हमको हमारे बच्चों को आगे सिखाना है। तो वह परिश्रम करके बच्चों को सिखाना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और जिसको मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना सब परिश्रम जो है, बट वो यह भी होता है कि वो कभी कभी खुद का ख्याल नहीं रखते, खुद का ध्यान नहीं रखते, इसके लिए हमको उनको बताते रहना चाहिए कि यह बहुत जरूरी है कि खुद का स्वास्थ्य बहुत ही नेसेसरी है और वह अगर अच्छा मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आगे जाके बच्चों के लिए भी वो सब कुछ कर पाएंगे। जैसे सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूल्स में भी वो उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और सेल्फ हाइजीन के बारे में उनको बताना पड़ता है, अपने परिसर के आजू बाजू का जो वातावरण है या परिसर है वो भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, तो ये जानकारी देना उतना ही जरूरी है उनके लिए। खाने पीने के लिए कभी कभी बहुत सारी उनको तकलीफें रहती है, जैसे कि रोज का दाल रोटी चावल या सब्जी, इन चीजों के लिए भी मिलना उनके लिए मुश्किल रहता है जो कमाने के बाद ही उनको हासिल होता है। तो फिर भी जो उनके चेहरे पे मैंने एक मुस्कुराहट देखी है बात करते वक्त, ये बहुत अच्छा लगता है कि वो मतलब उसमें भी मुस्कुराते रहते हैं। एक छोटी सी लड़की ने उसका चेकअप करते वक्त मुझे बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है। और ब्लाइंड स्कूल के लड़कियों के लिए जब मैं गई थी तो वहां पे मैंने उनको देखा कि एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए भी वो जूझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा।

0: अच्छा लगा मुझे कि अपने प्रतिकूल परिस्थिति पे भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं, और हमने जो उनके लिए जो कैंप रखा था उसमें भी हमने उनको काफी सारे मार्गदर्शन करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजों से अच्छा लगा कि ये हम खुद मतलब जो हटके कर रहे हैं, अपने क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं उनका काउंसलिंग करना, डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बातें करना अलग हो जाता है, क्योंकि तब जब हम उनको बताते हैं कि प्रोटीन्स में आप पनीर लो, ब्रोकोली लो, ये खाओ, कम खाओ, ओबेसिटी या ओबेसिटी से लेके ये सारी चीजें मतलब अवॉइड करने के लिए इसमें मॉडरेशन होना चाहिए, तो ये सारी चीजें बताना अलग हो जाता है और इनके लेवल के लोगों को लिए सब काउंसलिंग करना, समझाना अलग बात हो जाती है। तो अलग तरीके का सुकून दोनों में मिल जाता है या मिलता है, मिलते रहता है।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक तरफ है हम लोग जो ओवर न्यूट्रिशन से ग्रस्त थे और इस तरफ है ये लोग जो हमसे ट्रिपल या फोर टाइम ज्यादा श्रम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी निकालते हैं और फिर भी ये अंडर न्यूट्रिशन होते हैं और इनके पास वो सब नहीं है जो हमारे पास है, फिर भी इतना पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं। तो आई एम श्योर जब आप इतना क्लोजली डील करते होंगे तो इट्स आई ओपनिंग एंड इट मस्ट बी गिविंग यू कितना प्लेजर अंदर से, कितना सुकून मिलता होगा आपको।
0: बराबर। और मतलब मैं बाकी बच्चों को भी इसकी वजह से कहना चाहूंगी कि परिश्रम करते रहो। आजकल माता पिता से काफी सारी सुविधा मिलती रहती है और हम भी उसी अनुकूल परिस्थिति में सब बढ़ते आ रहे हैं, बट उसका मतलब उन्होंने सही मायने में उसका मतलब उस पे नाज करना चाहिए और संभल के इस्तेमाल करना चाहिए और सेहत का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इतना जो एक्सेस आपको मिला है उसका यूज करें, ऑप्टिमम यूज करें, उसको अब्यूज मत करें प्लीज। और हम बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसा जीवन मिला है। कभी बाहर निकल के इन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास ये बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए यू नो दे हैव टू स्ट्रगल डे इन एंड डे आउट, बट फिर भी उनके पास वो जज्बा है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर, अपने बच्चे को यूपीएससी तक क्लियर करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, विजन रख सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल एंड दिस इज वर्थ लर्निंग फ्रॉम देम। तो जब आप थेरेप्यूटिक योगा के बारे में बात करते हैं, उससे जुड़े हैं, वो करवाते हैं, करते हैं, आयुर्वेदा से जुड़े हैं इतना क्लोजली, तो किसी भी एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो ये बहुत इजीली कह देता है, जैसे कि मैं ही, कि समय नहीं है, तो मेरे लिए और मेरे उन श्रोताओं के लिए जिनके पास समय नहीं है, कोई 15 मिनट्स का मेंटल या फिजिकल वेलबींग के लिए अगर कोई नुस्खा है तो वो क्या सलाह है मैम?
0: बराबर। तो पहली बात है कि जब आयुर्वेद के पास भी लोग आते हैं तो मुझे इसी अप्रोच से आके मिलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आपका मतलब आप इलाज करोगे तो कितना समय लगेगा, मुझे इलाज में कितना समय लगने वाला है, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, ऐसे सब हमसे आके सवाल करते हैं। तो हर किसी को उस तरीके से हमको टैकल करना या उनको इलाज के नुस्खे बताना बहुत जरूरी रहता है, उनके खाने पीने के तरीके, या जैसे आपने अभी योग के बारे में पूछा, तो योग यह जीवन शैली में बहुत ही जरूरी है। और जैसे आयुर्वेद के त्रिस्तंभ है, यानी आहार, विहार और निद्रा, मतलब नींद, और विहार यानी जो दैनंदिन दिनचर्या या जीवन शैली, तो इस जीवन शैली में योग का समावेश होना या एक्सरसाइज, व्यायाम का समावेश होना बहुत जरूरी है। पहली बात है कि योग को हम बोलेंगे योगश चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब क्या है कि योग से हम अपना मानसिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छे तरीके से हम इसे स्वास्थ्य बरकरार रख सकते हैं। और इसके लिए मैं शुरुआत करूंगी अपनी नींद अच्छी होने के लिए और फिर आगे बढ़ूंगी। तो बहुत जरूरी है कि अपनी नींद अच्छी हो, इस प्रकार जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम हमेशा बोलते हैं कि रात को आप अपने पैरों के तलवे को, या इधर नारियल का तेल हो, तिल का तेल हो, हर ऋतु या सीजन के हिसाब से आपने लगाया तो अच्छी बात रहती है, नींद अच्छी लगती है। और सवेरे उठ के गुनगुना पानी पीना जो कफ दोष कम करता है, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए, ये कुछ व्यायाम मैं आपको अभी बताती हूँ, वो हमेशा कर सकते हैं। एक तो पहली बात है सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो है जैसे कि नेक एक्सरसाइजेस जो ग्रीवा के व्यायाम है, और अपना मणिबंध यानी ग्रिस्ट के व्यायाम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार में जो ऊर्ध्व हस्तासन यानी फर्स्ट स्टेप जो है, जो स्ट्रेच की वजह से हमारा अपर बैक या बैक के लिए स्ट्रेच मिलता है, भुजंगासन से इसी प्रकार का स्ट्रेचिंग होता है। तो ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं, ये अपना जो स्ट्रेचिंग करता है स्पाइन के लिए, पैरास्पाइनल मसल्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पोस्चर की वजह से आजकल लोग काफी सब कठिनाई देखते देख रहे हैं कि उनको बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है। तो ये टैकल करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं ये, जो वो गूगल करके भी देख सकते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार भी अगर करना है तो वो अच्छे से गाइडेंस, अंडर गाइडेंस करना जरूरी है। दूसरी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया नेक एक्सरसाइजेस, आंखों का व्यायाम जो है आजकल लॉन्ग स्क्रीन यूसेज की वजह से जरूरी है। उसी तरह से ओम का भ्रामरी जो हम बोलते हैं, तो भ्रामरी यानी हमिंग, और ध्यान धारणा मेडिटेशन, अगर ये नहीं होता है सुबह के टाइम पे तो रात को भी वज्रासन में बैठ के भी या नॉर्मल कोई भी उनको जो सुखासन यानी कंफर्टेबल पोजिशन में रात को सोते वक्त भी ये आसन या ओमकार करना, ध्यान करना या सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य और मन की चंचलता कम होगी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम उनके पूरे शरीर पे भी होगा, उनके काम काज पे भी होगा कि वो एकाग्रता से अपना काम कर पाएंगे।
1: मैम आगे चलते हैं, आपने जी आपने नेशनली तो इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ आप कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोसाइटी को भी इतना गिव बैक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने इंटरनेशनली भी, जैसे कि मैंने जाना आपके बारे में, आपने वियतनाम में माइग्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पंचकोश और पंचकर्मा के थेरेपेटिक एप्लीकेशन पर पेपर प्रेजेंट किया है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके हमारे ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोचेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वहां से आप क्या लेकर लौटे?
0: तो मुझे ये कहना बहुत अच्छा या गर्व महसूस हो रहा है कि पहली बात है मुझे ये जो अवसर मिला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके यह प्रदर्शित करे, या अपना जो ट्रेडिशनल यानी प्राचीन शास्त्र है इसके बारे में जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस थे तो देखे ही आ रहे थे कि उपचार से कैसे फायदा होता है, जैसे कि पंचकर्म है, पंचकोश पे हमको जो काम करना है अलग अलग स्तरों पे, और माइग्रेन या स्ट्रेस में इनका जिस तरीके से हम देख रहे थे, वो जाके इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना एक बहुत ही सुरीला अनुभव था। और साथ ही में मतलब वहां पे जब जाना या जाने का सोचा तभी ऐसा लगा था, बहुत घबराहट हुई थी कैसे होगा क्या होगा, और उसके बाद उन्होंने एक हफ्ते पहले मुझे एंकरिंग का भी उन्होंने अवसर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि अरे ये कैसे मेरे से होगा, मतलब उन्होंने रैंडम पिक किया था और मुझे कॉल आया था, तो ये सोच के भी मुझे घबराहट हुई थी कि एक तो मैं पेपर प्रेजेंटेशन पहली बार करने जा रही हूँ, उस पर मुझे एंकरिंग भी करना है, अलग अलग वैद्यकीय गण के तज्ञ जो हैं उनकी पहचान जो है उसके बारे में स्टेज पे बोलना है, तो बहुत ही मतलब ऐसे अलग विद डिफरेंट चैलेंजेस में गई थी। बट जब जो वहां का अनुभव था बहुत ही अच्छा हुआ। चैलेंजेस तो आए जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और जो हमको चुनौतियां आती हैं इस तरीके से, तो वो चुनौतियां भी हमको बहुत सारा सिखा जाती हैं। तो पहली बात है कि नई भाषा, वहां के लोग, फिर वहां पे जो हमने मतलब एंकरिंग करने का अवसर, मेरा पेपर प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीजों में एक अलग सा मतलब एक एक अनुभव आते गया, अलग अलग वैद्य गणों से मिलना, उनकी जान पहचान, उठना बैठना उनके साथ, ये बहुत ही एक मतलब अलग सा अनुभव था। उसी के साथ जैसे मैंने पंचकर्म और पंचकोश के बारे में जो बातें मतलब उनको वहां पे पेपर प्रेजेंटेशन किया, उसी तरह गर्भ संस्कार, योगिक प्रैक्टिसेस, मुद्रा, मर्म चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली, म्यूजिक थेरेपी, इसके बारे में भी अलग अलग वक्ताओं ने वहां पे उनका प्रदर्शन जो बताया या चर्चा हुई, उससे बहुत ही ऐसे एनरिचिंग एक्सपीरियंस हुआ वहां का। और लोग अलग अलग प्रांतों से आए थे, जो डॉक्टर्स थे जैसे कि मुंबई, पुणे, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, संगम ने, तो बहुत सारे यहाँ से वैद्यकीय गण और अलग अलग प्राचीन शास्त्रों में अल्टरनेटिव थेरेपीज प्रैक्टिस करने वाले लोगों से उठना बैठना हुआ, बहुत ही अनोखा और अलग अनुभव था। ये एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैं गई वहां पे और मुझे ऐसे लगा कि अरे प्राचीन मतलब भाषा अलग है, बट वहां के लोग इतने आत्मीयता से उनकी जो हमारी तरफ सब जिस तरीके से मतलब ये कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा उससे। और पहली बात है जो वियतनामीज डांस और सिंगिंग से हमारा जो वेलकम हुआ हमारे कॉन्फ्रेंस का, और बाद में जो सेकेंड डे पे मेडिटेशन सेशन था वो अगेन ध्यान धारणा पे मेडिटेशन सेशन भी उनकी वियतनामीज लैंग्वेज में ही हो रही थी वो सेशन, और साथ में एक ट्रांसलेटर भी था। तो वो जो लड़की थी वो बता रही थी कि किस तरीके से जब उसने अपनी माता को खो दिया, उसकी कोई ट्रेजेडी हुई थी, और वो डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए किस तरीके से उसने योगिक प्रैक्टिसेस, ध्यान धारणा, दवाइयों के साथ, प्राचीन दवाइयों के साथ इसका उपयोग हुआ। और जो मेडिटेशन सेशन जो उसने कंडक्ट किया उसके बाद, तो भाषा बिल्कुल ही ऐसे लगा कि भाषा का इसमें कोई भी मायने नहीं रखता। जो म्यूजिक है और मेडिटेशन है इसका एक अपना ही जो हीलिंग प्रोसेस होने के लिए अपना ही अलग लेवल का एक सुकून मिलता है, एंड इमोशनली ये बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है और मन के स्तर को या मन को सुकून देने वाला था। मतलब हमारे बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए, हम भाषा नहीं समझ रहे थे फिर भी वो इतने स्ट्रांग वाइब्स थे, तो इसका एक हीलिंग का लेवल ही अलग महसूस हुआ। और एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो वियतनामीज लोग हैं वो अपनी जो जीवन शैली मैंने उनकी देखी कि दे आर लाइक वेरी फिट पीपल एंड वेरी लीन ऑल्सो, सुबह जल्दी उठते हैं। मैं जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई 7 बजे वहां पे पहुंच रही थी, तो लोग मतलब उनके ऑफिस जाने के इसमें थे और पूरा उनका दिन का दिनचर्या, शाम को वो लोग जुम्बा प्रैक्टिस, फिटनेस पे भी बहुत सारा मतलब ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीजें देख के बहुत उनका प्राचीन शास्त्र भी और ट्रेडिशनल मेडिसिन से जो वो जुड़े हुए हैं ये समझ में आया, और आयुर्वेद और उनका जो प्राचीन शास्त्र है ये बहुत मिला जुला और योगिक प्रैक्टिसेस भी मिली जुली है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है मैम, कैसे हम बाहर जाते हैं तो कितना कुछ हम लेके आते हैं अपने साथ और कितनी आई ओपनिंग होती है। हम कभी सोचते हैं कि हमारा देश, हाँ हमारा देश तो है, बट दूसरे देशों को भी तो देखिए वो क्या दे रहे हैं दुनिया को और क्या आप ले सकते हैं उनसे।
0: बरोबर।
1: और म्यूजिक ट्रूली हैज नो लैंग्वेज मैम, तो इसी एहसास के साथ, इसी खूबसूरत थॉट पे आज का मेरा आखिरी सवाल है, और उस सवाल के साथ जैसे मैंने शुरुआत में कहा था मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ लाइनें हमारे लिए अगर गुनगुना दें आपकी खूबसूरत आवाज में।
0: जी, और एक सिर्फ मैं एक और एक बात कहना चाहूंगी कि ये सारी थेरेपीज का मैंने देखा है, पंचकर्म हो या जहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा फायदा होता है, स्ट्रेस में, माइग्रेन, बीपी की समस्या हो, एंग्जाइटी पेशेंट्स हो, इसमें मैंने बहुत सारा मतलब देखा है कि सुकून या अल्टरनेटिव थेरेपी का फायदा होता है। और उसी तरह बोलना चाहूंगी कि म्यूजिक इज आल्सो वन ऑफ अ थेरेपी वी कैन से, जो बहुत फायदेमंद या जिसका हमने देखा है कि लोगों पे जो मानसिक स्तर पे भी उसका फायदा दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल, रूट लेवल पे आप काम करते हैं जब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप वहां से डील करते हैं, थेरेपी से डील करते हैं तो
0: बराबर।
1: बहुत सुंदर मैम जी,
0: तो मैं एक सीख की तरफ ऐसा सीख सोच के एक गाना गुनगुनाऊंगी, तो मुझे दो गाने गाने का अवसर आप दीजिए और छोटे छोटे लाइन है।
1: जी जी जी,

0: सो बोलना यह है कि लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर मोमेंट्स वी एक्सपीरियंस एंड अनुभव में आते हैं.
1: यस.
0: और दूसरा एक गाना ये गाऊंगी

0: क्या बात है मैम।
1: ये बोलना चाहूंगी कि जिंदगी क्या चीज है, इसे खुद से भी इश्क कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैम आपने गाया, और मैं आपको आपकी गायकी के ऊपर इनवाइट करना चाहूंगी कि आप एक प्रोग्राम करें हमारे आज के कलाकार का SN रेडियो पर। बहुत बहुत बहुत ही हमें अच्छा लगेगा आपको और गाने आपकी आवाज में सुनकर, खूबसूरत आवाज। और जो मेरा आखिरी क्वेश्चन था उसका शायद जवाब आपने गा के ही दे दिया, फिर भी मैं ये सवाल पूछूंगी कि अगर जिंदगी अनप्लग्ड के इस स्तर से आप सभी श्रोताओं को एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहें जिसमें कोई मेडिसिन नहीं हो, बस वो एक प्रिस्क्रिप्शन हो, तो वो क्या होगा और उसमें क्या आप लिखेंगे?
1: प्रिस्क्रिप्शन अगर देना चाहती है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि संयम, मतलब अपने जीवन शैली में दिनचर्या का बहुत बड़ा बहुत मायना रखता है, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी संयम और समय, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है हर चीज में। जैसे हितार मितार आयुर्वेद में बताया गया है, सो जो जीवन शैली में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको अपनाने की कोशिश कीजिए, तो और संयम होना जरूरी है, मॉडरेशन होना जरूरी है, ताकि हम कोई भी चीज में ऐसा ना हो कि हमको बहुत अच्छा लगा, मीठा भी अच्छा लगता है, तीखा भी अच्छा लगता है, चीज अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने दायरे में होनी चाहिए, खाने के भी अपने एक लिमिटेशंस होने चाहिए, जीवन शैली में भी पार्टीज कर रहे हैं, बाकी कोई चीजें उसमें भी लिमिटेशंस होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें मॉडरेशन में हो तो अपना जीवन भी स्वस्थ रहेगा, और इसी तरह समय का भी बहुत ध्यान रखना उतना ही जरूरी है, समय पे खाएं, समय पे जो एक्सरसाइज बोला या व्यायाम करना, समय पे अपना खाना पीना, समय पे सोना, ये उतना ही जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए और जीवन अपना खूबसूरत बनाने के लिए।
0: बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर ख्याल, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत सारी गहरी और बिल्कुल अनुभव के निचोड़ से निकली हुई बातें आज आपसे साझा की, और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की। आउटर तो वर्ल्ड है ही, बट अगर आपका इनर सॉर्टेड है, वो सेंटर्ड है, वो ट्रांसफॉर्म्ड है, धीरे धीरे आप उसकी तरफ चल रहे हैं, चाहे वो थेरेपी से हो, योगा से हो, पंचकोश के बैलेंस से हो, बट अगर आप उस रास्ते पे हैं तो आज नहीं तो कल आप एक सेंटर्ड ट्रांसफॉर्म्ड बीइंग जरूर बन सकेंगे। इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। माया जी आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिल्कुल इतनी सारी अपनी गहरी अपने अनुभव से निकली हुई बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, हमें बहुत इनलाइटन फील हो रहा है।
1: थैंक यू तनुषा जी, तो सबसे मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मैं अंशुल उल्लाल उसको भी धन्यवाद कहूंगी जो मेरा कजिन है और उसने आपको मेरे बारे में बताया, तो धन्यवाद उसे भी, और आपके ये रेडियो स्टेशन के लिए को भी मैं धन्यवाद, और आगे बेस्ट विशेस दूंगी मेरी तरफ से।
0: बिल्कुल मैम, अंशुल सर को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया और हमने इतनी सारी बातें साझा की आज मिलकर इस एपिसोड में, तो थैंक यू मैम, थैंक यू अंशुल सर, और थैंक यू SN रेडियो। डॉक्टर माया, आज की बातचीत ने हमें ये याद दिलाया कि हेल्थ सिर्फ रिपोर्ट्स और मेडिसिन का नाम नहीं है, बल्कि बॉडी, माइंड, लाइफस्टाइल और इनर बैलेंस का नाम है। आपने आयुर्वेदा, वेलनेस और सेवा के लिए अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। तो अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर की बातें सुनिए और अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
2: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। दुनिया की क्या हालत है दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन

0: कहते रिकी, इसकी तो हवा ही निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है गोविंद, तो इसमें हवा भरवा ले।
0: अच्छा भैया,

गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार संता और उसका परिवार गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा, अरे वाह संता जी, आप तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, शाबाश, आपको मिलता है ये 500 रुपए का इनाम। और उसने 500 रुपए दिए। अब आप ये बताएं कि इस 500 रुपए का क्या करेंगे? तो संता ने कहा, जी सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। तो संता की माँ बगल में बैठी थी, उसने कहा, अरे इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, मुझे पता था हम चोरी की गाड़ी में बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोचिए क्या होता अगर रजनीकांत 150 साल पहले पैदा होते। आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को लड़नी पड़ती।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो

अर्जुन के सच्चे सपूतों पूछो, और कलयुग में सतयुग के दूतों पूछो।

संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास

जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भीम 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एंड रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक क्रिश्चियन हैं। आइए उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे। आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच। गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हिलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया, तो उसकी आंखों में आंसू थे, सांसों में तेजी थी, दिल में बेबसी थी। परी ने पहले बताया ही नहीं कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कला।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

जाते जाते कह गए, वो जाते जाते कह गए कि हम सिर्फ ख्वाबों में आएंगे। हमने कहा वादा तो करो, हमने कहा वादा तो करो, हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ दिल की असीम गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त हर

0: बातें बनाए ना बनी, नुक्ता छी है गमी दिल।
1: बहुत खूब अनप्लग्ड वर्जन इतना अच्छा गाया है आपने। आई एम श्योर आपने म्यूजिक के साथ तो चार चांद लगा दिए होंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारी चित्रा की आवाज में ये खूबसूरत सी गालिब की गजल। आइए मिलकर सुनते हैं।

0: वाह चित्रा जी, बहुत बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज की मिठास और गालिब के अल्फाज, क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत गाया आपने।
1: थैंक
0: आइए अब मुंबई से चेन्नई के आपके इस सफर पर बात करते हैं। चित्रा, आपने बताया कि मुंबई में आपकी संगीत की फाउंडेशन पड़ी, नींव पड़ी, लेकिन शादी के बाद आप आ गई चेन्नई। अब एक नए शहर में आने के बाद आपके गाने के सफर को एक नई दिशा कैसे मिल गई, आपकी म्यूजिकल जर्नी को? और फिर ये भी कि आपके ससुराल में भी सब संगीत के शौकीन हैं, तो घर के प्रोग्राम्स में सब मिलकर गाने की ये फैमिली ट्रेडिशन जो थी, परंपरा थी, आपके दिल को कितनी खुशी देती है, क्या एहसास था वो?
1: या आई एम फॉर्चुनेट, मेरा बचपन इतना स्ट्रांग रहा म्यूजिकली, एंड जब मैं चेन्नई आई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू कंटिन्यू इन दिस वे. लेकिन मेरे ससुराल वाले भी बहुत जैसे आपने भी कहा, म्यूजिक लविंग है, एंड उन्होंने उनको तो बहुत खुशी हुई कि मैं भी गाती हूँ. एंड इमीजिएटली मेरे एंगेजमेंट पे ही उन्होंने सब लोगों ने बाजा वगैरह लेके वी ऑल सैट एंड महफिल जम गई वहां पे. सो इट वाज इट्स वेरी नाइस. आई मीन इट वो सब पंकज मलिक एंड मुकेश जी, केन सहगल के फैंस थे. मुझे भी पुराने गाने बहुत मालूम है, एंड इट वाज व्हाट डू यू से, आई डोंट नो, इट वाज रियली अ ब्लिसफुल पीरियड. एंड वो अभी भी कंटिन्यू होता है जब मेरे फैमिली में, हमारे ससुराल में भी जब भी हम लोग मिलते हैं तो म्यूजिक तो होता ही है. एंड सो आई एम वेरी लकी दैट माय हस्बैंड, माय एंड हिज फैमिली, बोथ ऑल ऑफ देम आर वेरी एनकरेजिंग.
0: वेरी नाइस.
1: एंड चेन्नई इज अ वेरी कल्चरली रिच सिटी, एकदम वहाँ यहाँ पे म्यूजिक वगैरह कर्नाटक म्यूजिक ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, लेकिन फिर भी देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लिसन टू म्यूजिक, टू सिंग एंड ऑल दैट. एंड लेकिन जब मैं 88 में यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे हिंदी इतना पॉपुलर नहीं था, हिंदी सॉन्ग वगैरह, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड ऑल दैट. एंड मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे सिंगिंग में आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई नीड टू डू मोर. फिल्म सॉन्ग गा के लाइक द वे आई सिंग रेडियो को कॉपी करके वगैरह, इट वॉजेंट गिविंग मी सेटिस्फेक्शन. तो इसीलिए मैंने क्लासिकल लर्न करने के लिए तब मैंने स्टार्ट किया हिंदुस्तानी क्लासिकल. लेकिन जॉब एंड फैमिली कमिटमेंट्स के वजह से मैं तब वो कंटिन्यू कर नहीं कर पा सकी. वो मैं अब कर रही हूँ, लेकिन माई जर्नी स्टार्टेड देयर. एंड दैट्स वाई मैं आई रियलाइज कि चेन्नई आने के बाद माई म्यूजिक टुक अ डिफरेंट पाथ, आई वुड से या मीनिंगफुल पाथ ऑल्सो.
0: वेरी
1: तो दैट्स वर्क. या
0: नाइस. नहीं, आपको तो बहुत, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है ऐसा ससुराल, और जहाँ पर आपके टैलेंट को निखारने का इतना मौका मिला आपको, आपको कितनी इनकरेजमेंट मिली. और वाकई आपने जैसे शहर के बारे में बताया है तो वहां से पता चलता है, ये तो हमको मतलब सुनने में हम तो सोच सकते हैं कि चेन्नई में इस तरह का माहौल है, लेकिन अब आज आपसे बात करके तो यकीन हो गया कि वाकई ही इट्स ए कल्चरली वेरी रिच सिटी चेन्नई. तो जिस परिवार में सुरों से रिश्ते बांधे जाते हैं वहां तो वैसे भी संगीत बहता ही रहता है, मोहब्बत भी बनी रहती है. तो आइए दोस्तों, चित्रा कुमटा, चित्रा कुमटा, हम चित्रा ही बोलेंगे, चित्रा जी.
1: या दैट्स परफेक्टली फाइन.
0: हाँ, वो ज्यादा अच्छा है ना, तो गलत बोलने से अच्छा है कि खाली चित्रा जी बोला जाए. तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी चित्रा की आवाज में चित्रा सिंह की गाई हुई ये दूसरी गजल, जो कि बेहद खास है. दर्द बढ़कर फुगा ना हो जाए, ये जमी आसमान ना हो जाए, हमारी चित्रा की आवाज में सुनते हैं ये चित्रा सिंह की गजल.
1: हम्म.

0: बहुत खूबसूरत चित्रा, आपने भी ये चित्रा सिंह की दर्द भरी रूहानी आवाज जैसे थी बिल्कुल आपने उसी अंदाज से गाया, सीधे दिलों में उतर गई। बहुत खूबसूरत आपने गाया। अब जरा आपकी प्रेरणा की बात करते हैं, आपकी इंस्पिरेशन की बात करते हैं। आपने बताया था कि आपकी कजन संध्या जी आपके परिवार में संगीत को बतौर करियर चुनने वाली पहली शास्त्रीय गायिका थी। उनसे आपको क्लासिकल संगीत सीखने की प्रेरणा कैसे मिल गई? और आपने ये भी बताया कि आजकल वो न्यूजीलैंड में है, तब भी वो एक गाइड और मेंटोर के रूप में उनका साथ जो है या उनकी गाइडेंस जो है वो आपकी गायकी को कितना निखारने में मदद करता है।
1: मैं उनको संध्या का बोलूंगी, हम लोग अका बोलते हैं सिस्टर को।
0: ठीक है।
1: संध्या का हमारे लिए लाइक शी इज बीन एन इंस्पिरेशन मॉडल। इवन जब हमारे ग्रोइंग अप इयर्स में मुंबई में जब हम थे तब भी यू नो वी सॉ कि उनका ट्रेजेक्ट्री कैसा रहा। मीन्स वो शी इज लर्न्ड क्लासिकल एंड शी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन बहुत प्रेस्टिजियस म्यूजिक शोज। वसंत देसाई जी के म्यूजिक शो में थी, देन टीवी सीरियल्स में उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसका म्यूजिक उन्होंने गाया भी है वहाँ पे। एंड वैसे ना बहुत सारे, आई मीन शी इज कट लॉट ऑफ एल्बम्स। अभी टाइम भी नहीं रहेगा उनके बारे में बताने के लिए, लेकिन शी हैज डन अ लॉट ऑफ यू नो उनका बहुत वेरिएशन वैरायटी है उनके सिंगिंग में। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि उसका उनका क्लासिकल जो बेस था दैट गेव हर द रेंज, दैट गेव हर द डेप्थ टू यू नो एक्सप्लोर सभी म्यूजिकल जॉनरा। तो दैट इज हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड। एंड जब मैं चेन्नई आई एंड मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इन टू लर्निंग। एंड अब जब मैं लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ म्यूजिक, अगर मुझे कोई डाउट है, अगर कुछ मुझे फीडबैक चाहिए कि मैं ठीक गा रही हूँ या मेरा आवाज नो इज इट ओके, इवन फिल्म सॉन्ग में जो नुआंसेस वो जो यू नो ले सकती है
0: बिल्कुल,
1: या तो वो मैं उनसे यू नो उनको गा के मैं भेजती हूँ और कहती हूँ कि इज दिस ओके, और इसके और डू यू थिंक कि इसको और कोई अंदाज में मैं गा सकती हूँ। तो दैट्स द वे शी गिव्स मी द फीडबैक। अभी न्यूजीलैंड से भी वो मेंटोरिंग ऐसे ही करते हैं मेरे लिए।
0: वेरी नाइस, बहुत खूब।
1: या
0: बिल्कुल आप, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप फिल्मी गाने भी उनको गा के उनके नुएंसेस जानने के लिए कि आप करेक्टली गा रही हैं, और आप उनको वॉइस क्लिप भेजती हैं, फिर वो आपको सही आपको आपका मार्गदर्शन करती हैं। वेरी नाइस। अगर आपको मतलब इस तरह की अगर फैमिली में ही इतना सही मेंटर मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि इंसान की कला को सही दिशा मिल जाती है चित्रा जी, और आपको भी मिली हुई है, तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं।
1: यस, थैंक यू।
0: तो दोस्तों आइए इसी नोट पर सुनते हैं फैज अहमद फैज साहब की लिखी हुई और मैडम नूर जहां की गाई हुई ये अमर रचना। ये क्या गाया है आपने चित्रा? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अरे वाह, ये तो मेरी
1: बहुत
0: फेवरेट गजल है ये तो। और किस अंदाज से गाया है इसको, वाकई बहुत खूब। ये YouTube पे वही है ना जो मैडम नूर जहां स्टेज पे गा रही हैं? हाँ
1: हाँ, करेक्ट।
0: ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है ये। बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, हमारी चित्रा ने ये इतनी खूबसूरत नूर जहां की गजल गा के हमें भेजी है, मिलकर सुनते हैं हम सब एक साथ।

0: वाह, इस नज्म का एक एक लफ्ज दिल को छू लेता है। चित्रा जी, आपने बेहद खूबसूरती से इसको निभाया है। बहुत बहुत खूब। अब आप बात हम करते हैं चित्रा, आपकी जिंदगी की इस दूसरी सुहानी पारी की। आपने बताया कि भी 3 साल पहले आप नौकरी से रिटायर होने के बाद आपने भजन सेवा ग्रुप्स के साथ गाना शुरू किया, जिस और अपने इस दूसरे सफर को आप कितना एंजॉय कर रही हैं, और इसके साथ ही आप दूसरों को सिंगिंग विद ट्रैक्स पर गाना सिखाने का जो आप काम कर रही हैं, उससे आपको कैसी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं, आपने ये भी बोला कि आपने अपने इस ग्रुप से ग्रुप का नाम खाना एंड गाना भी रखा होगा, ये बताइए जरा।
1: या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आई फील। पहले मैं मेरा सेकेंड इनिंग्स के बारे में बताती हूँ। वो जैसे आपने बोला सेकेंड इनिंग्स इज एन राइट नेम फॉर दिस, क्योंकि ये टेस्ट मैच और T20 का कॉम्बिनेशन है मेरा जो अभी चल रहा है। क्लासिकल जो ट्रेनिंग मैं सीख रही हूँ उसका जो रियाज वगैरह मैं एंजॉय करती हूँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है एंड उसका फ्रूट्स ऑफ वो दैट लेबर आई सी इट इन माय यू नो लाइफ म्यूजिक, जो भजन एंड यू नो करोके सिंगिंग में आई एम एबल टू एंजॉय दैट, सो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फेज। एंड जो जैमिंग ग्रुप्स जो हमारे हैं मेरे हैं उनका नाम हमने उसका नाम है ना हम जोकिंगली खाना और गाना बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जब भी जैमिंग के लिए मिलते हैं तो गाना तो होता है लेकिन खाना इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट एंड कभी कभी खाना पहले गाना बाद में, लाइक सो इट्स फन बट इट्स बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स ओवर ऑल दिस, तो बहुत मजा आता है। या एंड मैंने अभी लाइक रिसेंटली ऐसे गाइड करने के लिए स्टार्ट किया, ऐसा कोई फॉर्मल ये नहीं है मेरा ट्रेनिंग या क्लास दूसरों को सिखाने का ऐसा कुछ। इट्स नॉट माय प्रोफेशन और एनीथिंग बट ट्रैक्स पे गाइड करती हूँ गाने के लिए फॉर पीपल हु नीड इट, बिकॉज ट्रैक्स पे क्या होता है सुर और ताल दोनों का ध्यान रखना पड़ता है एंड वी कैन नॉट सिंग द वे वी वांट टू, ट्रैक जैसे बजता है वैसा ही गाना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यू नो सो दैट टेक्स टाइम फॉर सम पीपल टू लर्न, सो आई हेल्प विद दैट। या बट आई एम एंजॉयिंग दिस फेज अ लॉट।
0: फिर तो मैं भी आपकी स्टूडेंट बन जाती हूँ चित्रा। और ये आपने बड़ा जबरदस्त बोला खाना एंड गाना, कि आप कहते हैं कि गाने से पहले खाना तो बहुत जरूरी है चित्रा लाइफ में। पंजाबी में भी एक कहावत है कि भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, तो इवन बाला को भी खाना चाहिए। और खाना को भी खाना चाहिए। और आप क्या बोल रही थी और किसको खाना चाहिए, आपके ये जो कोई भी फेस्टिवल हो सारे डेटी
1: गणपति फेस्टिवल के लिए मैं बोल रही थी।
0: लड्डू ना दो तो बात नहीं आपकी, वो
1: कहने मेनू बहुत इलैबोरेट रहता है हमारे फेस्टिवल का।
0: हाँ वो तो है। वेरी नाइस। जिंदगी के दूसरे पड़ाव में आपने अपने शौक को इस तरह आप जी रही हैं, यही असली खुशी है चित्रा जी। बहुत जबरदस्त। आइए अब सुनते हैं शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन साहब की गाई ये शाहकार गजल। वाह चित्रा जी, आपने ये गजल गा के भेजी है हमें, और कौन सी है ये? रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। बहुत खूब बहुत खूब, इतनी खूबसूरत गजल गा के आपने भेजी है, आई एम श्योर बड़ी जबरदस्त होगी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारी चित्रा की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल, और मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने बहुत जबरदस्त गाई होगी। आइए सब मिलकर सुनते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा, बहुत बहुत। मेहदी हसन साहब की गाई ये गजल तो वैसे भी संगीत की दुनिया का अनमोल नगीना है चित्रा जी, और आपने बखूबी निभाया इसको। अब जरा आपके सबसे बड़े सपोर्टर की बात कर लेते हैं। आपने बताया कि आपके बेटर हाफ, आपके शौहर, आपके पति, आपके सबसे बड़े चीयर लीडर हैं, चीयर लीडर और कम क्रिटिक भी हैं, ठीक है?
1: इम्पोर्टेंट है वो।
0: हाँ, इन्होंने आज के इस शो के लिए आपने गाने गाए और उन्होंने चुन चुन के आपको बताया कि ये ठीक है, ये गाओ, तो एक इनडायरेक्टली उन्होंने एक लिस्ट बना दी कि आप ये गाने भेजो, अपनी ये गजलें भेजो, ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना?
1: थोड़ा फुल क्रेडिट नहीं देना चाहती उनको, या उन्होंने सिर्फ हेल्प किया, लिस्ट बनाई नहीं।
0: ओके। उनके इस स्पोर्ट और संगीत की समझ ने आपको कितना फायदा पहुंचाया? और संगीत के अलावा आप ये भी बताइए कि आप बालकनी में फिल्टर कॉफी की चुस्कियां लेती हैं उनके साथ बैठ के, और गार्डनिंग भी करती हैं, और लंबी सैर करना तो आपको जिंदगी में बहुत आपको सुकून देता है। इतने अच्छे अच्छे शौक पाल रखे हैं आपने चित्रा, जरा तफसील से बताइए ना आप इन सब के बारे में।
1: या श्योर, सो फर्स्ट मेरे पति के बारे में बताऊंगी। उनका नाम सुदेश है, एंड वो गाते नहीं है, लेकिन वो आई फील कि वो दिल से सुनते हैं, तो उनको जो भी मेरा गाना होता है, ही इज एबल टू टेल मी कि अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है, ही मे नॉट बी एबल टू टेल, लेकिन यू नो ऐसे यू नो ही सेज कि ये अच्छा रहा, यू सिंग दिस, यहाँ पे आपने अच्छा गाया, ये यू नो यू कीप दिस, ये डोंट कीप दिस, ऐसा उन्होंने मेरे लिस्ट, मैंने मुझे बहुत सारे गाने मालूम है, तो उसमें से उन्होंने प्रून किया वो लिस्ट जो मैं अभी आपको ना भेज सकूं। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इट्स ऑलवेज बीन देयर कि कोई भी मेरा प्रोग्राम होता है, आई नॉर्मली आस्क हिम कि मैं क्या गाऊं, एंड ही इज एबल टू टेल मी द राइट सॉन्ग, तो इट्स अ वेरी लाइक आई वुड से ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हमें समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें,
1: एंड ऑडियंस को कैसे चाहिए वैसे गाना चाहिए ना, एज अ सिंगर यू शुड बी जस्ट सिंगिंग फॉर योरसेल्फ, तो इसमें उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: और फिल्टर
1: फिल्टर कॉफी, यस, चेन्नई, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनी तो आप प्लीज कम टू चेन्नई एंड आई विल गिव यू फिल्टर कॉफी, बिकॉज विदाउट फिल्टर कॉफी एंड चेन्नई दे आर इक्वल, यू नो लाइक आई मीन देयर इज नो चेन्नई विदाउट फिल्टर कॉफी।
0: यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड।
1: हां हां, सो आई लव गार्डनिंग, मेरा अच्छा गार्डन भी है, तो यू नो ऑन अ हॉलीडे ऑन अ संडे वी लाइक टू सिट इन द बालकनी एंजॉय यू नो द व्यू ऑफ आवर ग्रीन यू नो ग्रीनरी, सो नेचर से बहुत लगाव है, तो ये लॉन्ग वॉक सब यू नो इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट मेरे लिए।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतनी खूबसूरत लाइफ हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए, पति का ऐसा साथ मिले, कप फिल्टर कॉफी हो, वाकई बहुत सुहानी होती है जिंदगी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फिल्म उमराव जान से आशा ताई की गाई हुई आज की पांचवी और आखिरी गजल, जो हमारी चित्रा जी ने गा के भेजी है हमें। और ये क्या है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, यही है ना?
1: yeah.
0: और इसके मुझे बोल भूल रहे हैं के क्या है, ये क्या है, हदे निगाह में जहाँ मैं भूल
1: हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही
0: गुबार, गुबार ही गुबार है। वेरी नाइस। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी चित्रा की आवाज में ये खूबसूरत सी गजल।

0: बहुत खूबसूरत चित्रा, बहुत खूबसूरत
1: थैंक
0: आपने तो
1: यू
0: माहौल
1: थैंक
0: बना
1: यू।
0: दिया, इतनी खूबसूरत गाया आपने इसको। आइए अब हम अपनी इस सुहानी मुलाकात के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, जहां आप हमारे दोस्तों से बोलिए बाय बाय और उनसे लीजिए विदा। और आप क्या कहना चाहेंगी उनको?
1: या मैं आई वुड लाइक टू शेयर मेरा फिलोसॉफी ऑफ लाइफ क्या
0: नहीं,
1: है।
0: अभी आपको नहीं विदा लेनी, अभी तो आपने हमको ये बताना है कि आपने बताया
1: ओके
0: कि आपने ये बताया कि जो पसंद है वो करना है और जो
1: हाँ
0: कर रहे हैं उसे पसंद करना है।
1: ओके
0: जिंदगी के इतने खूबसूरत पड़ावों से गुजरने के बाद जीवन का आपका सबसे बड़ा फलसफा यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ तो हमने पूछा ही नहीं, आपसे विदा कैसे ले सकते हैं पहले ये बताइए। और फिर ये भी बताइए चित्रा कि रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील में जो हमारे दोस्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका
1: ओके
0: क्या खास पैगाम है?
1: ठीक है। जो आपने कहा मेरा फिलोसॉफी जो मैंने बताया था दैट इन इंग्लिश में अगर मैं बताऊं कि डू व्हाट यू एंजॉय एंड एंजॉय डूइंग इट, तो वो मेरी फिलोसॉफी है एंड अभी भी मैं वही फॉलो करती हूँ। आई मीन यू नो इट्स लाइक इट्स आई फील इट विल बी लाइफ लॉन्ग लाइक एज लॉन्ग एज आई एंजॉय इट एंड द मैसेज फॉर अदर्स आई वुड जस्ट से दैट टू एंजॉय द जर्नी। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा एंड यू वी फॉरगेट कि अभी जो करना है वो एंजॉय करना है या ठीक से करना है ध्यान नहीं देते। तो आई से दैट यू एंजॉय व्हाट यू डूइंग नाउ एंड बाद में सब ठीक हो जाएगा। दैट्स हाउ आई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। सो दैट इज माई एडवाइस और माई फ्यू वर्ड्स तुम सुनने वालों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी ये बात एक्चुअली बड़ी पसंद आई जो आपने बोला ना, जो पसंद है वो करना और जो कर रहे हैं उसे पसंद करना। डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू आर डूइंग, इजंट इट? तो बहुत खूबसूरत पैगाम है और इसी के आपके इसी पैगाम के साथ आप अपने हमारे दोस्तों को अब बाय बाय बोल सकती हैं।
1: या थैंक यू। या श्योर। एनी वे आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी सुनने वालों को आरती जी को रेडियो एसएन को अगेन अ बिग थैंक यू कि आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना एंड मुझे यहाँ आके गाने का और मेरे बातचीत करने का मौका दिया। सो आई विश एवरीबडी वेल। थैंक यू।
0: यस बहुत,
1: गुड
0: सबने
1: बाय।
0: बहुत एंजॉय किया है आई एम श्योर, और मैं ये बिल्कुल अपने दोस्तों की तरफ से आपको एश्योर करना चाहती हूँ कि आपका आपकी बातें सुन के सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी नोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं चित्रा। तो आइए दोस्तों, आप चित्रा कम कुमटा जी से बात करके और उनकी जिंदगी की इस खूबसूरत किताब के पन्ने पलटकर मेरे दिल में एक बहुत बात गहराई से बैठ गई है। वो ये कि हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा, जब जिम्मेदारियों से फुर्सत मिलेगी, तब हम अपनी पसंद का काम करेंगे या अपने शौक पूरे करेंगे। लेकिन चित्रा जी की जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मजा किसी खास मोड़ का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि हर लम्हे को अपनी पसंद बना लेने में है। नौकरी के बाद अपनी दूसरी पारी में जिस तरह उन्होंने संगीत, भजन सेवा और सादगी भरे पलों को चुना, बालकनी में फिल्टर कॉफी पीना, पेड़ों को सींचना और अपनों के साथ गुनगुना जीवन का असली फलसफा है। खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं है, बल्कि अपने आज को सुकून में जीने में ही है। अहमद फराज साहब ने क्या खूब लिखा है, शमशीरे इरादा से तकदीर को बदल डालेंगे। मुलाहिजा फरमाए, शमशीरे इरादा से तकदीर को बदल डालेंगे हम अपनी राह।

300 ग्राम थी, लगाड़ी ने 400 ग्राम बीज तक काफी असल पर्याप्त रहे से, अने इंथु कम थाई जाए तो हांगणू कम पड़े से, अने इंथु ज्यादा भी नहीं रहेवू जोई। तो किसान साथियों, संकर किस्मों हारू बीज नी मात्रा 150 थी 200 ग्राम तक प्रति हेक्टर तक काफी असल रहे से। तो किसान साथियों, किस्मियों टमाटर की किस्में में देखी जाए तो किसान भाइयों, पूसा सदाबहार, पूसा रूबी, अर्का विकास, सोनाली, पूसा शीतल, पूसा रोहिणी, पूसा 120 अने पूसा अर्ली डवार्फ, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 4 अने पूसा हाइब्रिड 2, शेड नेट अने पाली हाउस मा अवतार, अर्का मेघाली, अर्का सुरभी। तो किसान साथियों, ये किस्मत थायो अने हाउ नर्सरी की कम तैयार करवानी। तो नर्सरी तैयार करवा हारू जुलाई महीना मा पौधो तैयार करवा पड़े से, अने एक एकड़ क्षेत्र मा टमाटर नी पौध रोपवा हारू जुलाई महीना मा 2 डिसमिल परिक्षेत्र मा टमाटर ना बीजों नी नर्सरी नाखवानी। इना हारू खेतर ने एक भाग मा क्यारियो बनावीने गोबरनो खातर नाखवानो अने 2 इंची उठेली मिट्टी तैयार करीने देसी या फिर संकर बीजनी बुवाई करवानी, अने पौधा तैयार थावा पर खेतरमां इहुनी रोपाई करी देवानी। तो किसान साथियों, ये वात थई नवसरी तैयार करवानी, अने नवसरी तैयार करता वखत किसान भाइयों ने पूरु मालूम रहेवो जोईए कि नर्सरी तैयार करे बीजनी बोवाई कर्या बाद मां तीना ऊपरथी सीहळो रहेवो जोईए, अने या होई सके होनो टाटलो रहे टाटणो रहेशे, होना टाटणाथी या फिर खाकराना डोरनाथी या फिर पराळथी तीनाने ढाकीने असली तरहथी पौधानो रोपण करवो जोईए। तीनथी मई भाप वळे अने जो उगवा वाला जो पौधा छे त्या असली तरह थी त्या उगी सके। तो किसान साथियों, बुवाई नो समय तो टमाटर नी फसल ने आपू 2 वारी लगाड़ी से, खरीब हारू जुलाई थी अगस्त अने रबी मा रबी हारू अक्टूबर थी नवंबर ना आखिरी तक बुवाई अने रोपाई करी जाय से। तो किसान साथियों, उर्वरक नी मात्रा रोपाई ना 1 महीना पहलो गोबर या कंपोस्ट नो असल गळेलो अने हाडेलो खातर जो पुराणो खातर रहेवो जोईए, अने 20-25 टन प्रति हेक्टर ना हिसाब थी असली तरथी मिट्टी मां मेळवी नाखवानो। तो किसान साथियों, फास्फोरस अने पोटास नो जो मात्रा जो तिनो क्रम रहेशे 60 अने 50 किलोग्राम मात्रा रोपाई तो पहलो अने भूमि मां प्रयोग करवानो, अने बाकी नाइट्रोजन नी आधी मात्रा अने फसल मा फूल आवा पर इना टाइम पर इनो प्रयोग करवानो। तो किसान साथियों, टमाटर मा हाउस सिंचाई, टमाटर ने नमी नी जरूरत रहे से, अने इनमा ज्यादा या कम थावान नी बेहे हानिकारक रहे से, अने मौसम ना अनुसार गर्मी मा 6-7 दिन ना अंतराल पर सिंचाई करतु रहेवानो, अने ताड़ना दनों मा 10-15 दिन ना अंतराल पर टमाटर मा पानी आलतु रहेवानु, अने जमीन ना अनुसार भी किसान भाई ने ध्यान राखवू पड़े से, कईनी जमीन पातळी रहेशे अने कईनी गहरी जो जाडी रहेशे। तो गहरी जमीन मा कम पानी लागे से, अने जो पातळी जमीन से तीन मा नमी नी बार बार कमी थाई जाय तीना हारू तीन मा आपण किसान भाई नमी देखीने तीना हिसाब थी पानी फेरतु रहेवानु। ये वात थाई हाव सिंचाई नी, अने किसान भाईयो हाव तमन हूँ निंदाई गुड़ाई अने पौधा ने टेको आलवाना बारा मा जानकारी बताड़ो। तो पौधा ने टेको आलवानो अने निंदाई गुड़ाई की कम करवानी, तो इनाम देखी जाए किसान भाईयों, फसल नी हाते अक्सर जो खरपतवार जो दरोड़ी से एवं कई प्रकार ना खरपतवार ना झाड़का उगी जाए से, अने आवश्यक पोषक तत्व अने पूरी तरह पौधा तक नी पुगवा दे से, अने त्या वसमा तीनान खाई जाए से, कई प्रकार नो आपू खातर आलिए त्या भी तीना ने निंद्रणी जो छाड़का से त्या तीना खाई जाए से, अने आपड़ा असली पौधा से टमाटर ना तीना पौधा ने त्या नी पनपवा दे। ते तीनी हारू आपन किसान भाइयों ने समय समय पर निंदाई गुड़ाई करी ने खरपतवार निकालतू रेवानो, अने टमाटर मा फूल आवाना टाइम पर अने पौधा मा टेको आलवो जोईए। खासकर टमाटर मा जो लांबी बढ़वा वाली जो वेला रहे से तीनी किस्मों टेको आलवानी घनी जरूरत पड़े से, अने इनमा फल अने मिट्टी अने पानी नवा

0: आखरी जुताईना समय पर उर्वरकों ने अनुसंचित मात्रा नो प्रयोग करवो जोईए अने शेष उर्वरकों ने खड़ी फसल में आलवा हारू वसाड़ी लेवानो। तो किसान साथियों बीजनी मात्रा बीज हारू अदरकना कंदोनो चयन 6-8 महीनानी अवधि वाली फसल में पौधा ने चिन्हित करीने कापी लेवो जोईए। असली प्रकंदना 2.5 थी लगाड़ीने 5 सेंटीमीटर लांबा कंद जीहुनो वजन 20-25 ग्राम तीनमा कम थी कम 3 गांठियो रेव्यो जोईए। प्रवर्धन हारू उपयोग में आप इनी गांठियों ने ले सकी। तो किसान साथियों बुवाई नो समय अदरक की बुवाई दक्षिण भारत में मानसून फसल ना रूप में अप्रैल अने मई में करी जाए से त्या डिसेम्बर महीना में पाकिन तैयार थाई जाए से। जबकि उत्तर भारत में अदरक अने शुष्क क्षेत्र एक फसल से त्या अप्रैल थी जून महीना तक बुवाई करी जा सके से। सबथी असल समय जो रहे से किसान भाइयों 15 मई थी लगाड़ी ने 30 मई तक अने 15 जून ने बाद में बुवाई करवा पर कंद हड़वा लागे से। तो किसान साथियों पहाड़ी क्षेत्र में 15 मार्च ने आसपास में बुवाई करी जावा वाली अदरक में सबथी असल उत्पादन मळे से। बुवाई नी विधि अने बीज अने क्यारी नो अंतराल। तो किसान साथियों प्रकंदो ने 40 सेंटीमीटर ना अंतराल में ओरवू जोईए। मेड़िया कूड़ा विधि थी बुवाई करवी जोईए अने प्रकंदो ने 5 सेंटीमीटर नी गहराई पर ओरवू जोईए। बाद में असल हड़ेलू गोबर नु खातर अने मिट्टी थी ढाकी देवू जोईए। अगर रोपण करवो है तो कतार थी कतार 30 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर तक राखवी जोईए। बीज नो उपचार। तो किसान भाइयों प्रकंदो ने ओरवाथू पहलू मेनकोजेब मेटालेक्जल या कार्बन डाइजिम नी 3 ग्राम मात्रा ने प्रति लीटर पानी ना हिसाब थी घोली ने प्रकंदो ने 30 मिनट तक डुबाड़ी ने राखू जाई। सीहला नो प्रभाव। तो किसान साथियों अदरक ने हल्की सीहला मा खुला मा ओरी गई अदरक ने ओरी गई अदरक थी 25% ज्यादा उपज आले से अने कंदोनी गुणवत्ता में उचित बढ़ोतरी पाई जाए से। पलवार। तो किसान साथियों अदरक नी फसल में पलवार बिसाड़वानु अने घणु ही लाभदायक रहेशे। रोपवाना टाइम पर तिनाने भूमि में तापमान नमीना सामंजस्य बनाई राखे से अने तीन थी अंकुरण भी असल थाय से। खरपतवार भी इनमा नहीं निकले से। तो किसान साथियों निंदाई गुड़ाई मिट्टी चढ़ावानु पलवार ना कारण खेतर मा खरपतवार नी उगे से। अगर उगे तो तिना निकाल देवू जोईए। बे वारी निंदाई गुड़ाई अने 4-5 महीना बाद करवी जोईए। जबकि पौधो 20-25 सेंटीमीटर लांबो थाई जाए अने पौधा नी आसपास नी पर मिट्टी चढ़ाई देवानी। पोषक तत्वनो प्रबंधन। तो किसान साथियों अदरक एक लांबी अवधि नी फसल से अने तीहुनी तिनथी पोषक तत्वनी जरूरत पड़े से। खेतरनी तैयारी करता वक्त 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टर ना हिसाब थी हड़ेलू गोबरनू कंपोस्ट खातर खेतर मा सामान्य रूप थु फैलावीने मेळवी नाखवू जोईए। नाइट्रोजन 75 किलोग्राम अने 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर नी दर थी नाखवू जोईए। इना उर्वरक ने विघटित मात्रा मा आलवू जोईए अने तीनी ऊपर मिट्टी मा 6 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर नाखवाथी उपज असल मळे से। उन्नतशील प्रजातियोना नामो। तो किसान साथियों उन्नतशील प्रजातियो बेला अदा मोरन अदा जाती अदा काशी अने नाना आकारना कंद अने औषधि उपयोग हारू प्रयुक्त असल रहेशे। केकी बाजार स्थानीय नागा सिंह ज्यादा रेशा अने सुगंध हारू प्रयुक्त रहेशे अने विची नाड़िया किस्मियों सोंठ हुकेलो अदरक हारू भी मेसी की इसमें ज्यादा उपज हारू असल रेस है। तो किसान साथियों, खुदाई अदरक की खुदाई लगभग 8-9 महीना रोपवा ना बाद में मिली जाए से अने पायड़ा धीरे धीरे पीला पड़ी हूकवा लागे अने एवा टाइम पर अदरक की खुदाई करवी जोईए। भंडारण, तो किसान साथियों भंडारण हारू जीर अदरक कड़ी अने कम कड़वाहट कम रेशा वाली ओहे तो एवी अवस्था में परिपक्वाने बाद में असल थाई जाए से। तो किसान साथियों उपज, ताजा हरा अदरक ना रूप में 100-150 कुंटल प्रति हेक्टर तक अदरक नो उत्पादन किसान भाई ने मिली जाए से। तो किसान भाइयों, मैं हमने तमने अदरक ना बीज उत्पादन अने लगाड़वानी तरकीब ना बारा में अने कई एवी उत्पादन तकनीक अने भूमि नो चुनाव खेतर नी तैयारी अने बीज नी मात्रा अने बुवाई नो समय अने बुवाई नी विधि अने बीज उपचार करवाना तरीका अने भंडारण थी लगाड़ी तीहुनी उपज तक में तमने जानकारी हामलावी। पाकिस्तान साथियों, एवी खेतीवाड़ी नी असल असल जानकारी हामलवा हारू तमो हामलता रहेजो रेडियो टंटाबी 90.8 FM छावानी आवाज।
1: हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमो हामली रासे कार्यक्रम खेतीवाड़ी आपड़ा छावाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबी 90.8 FM छावानी आवाज।

के। तो किसान साथियों इन्हीं हाथे एक और बीजी किस्मा नाम तुम बतावा जाऊं। तो किसान भाइयों ने एवी चीजों ने नोट कर लेवे जो ये, क्योंकि जब किसान भाई ने बीज ना बारा मा पतो नहीं रहे कि आपन कई नहीं फसल और जो ही ज्यादातर फसल जो उत्पादन है बीज पर निर्भर करे से। तो अगली किस्म है पूसा मंजरी। तो पूसा मंजरी इन्हीं किस्म नो जो विकास भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने नवी दिल्ली ने द्वारा करियो से। तो किसान साथियों इन्हीं किस्म ना फल गोल रहे से अने हरा अने कोमल अने आकर्षक रहे अने मुलायम रहे से। तो किसान साथियों जर आपो असली किस्म नो अने पातला पातला अगर आलड़ा यो आपो लगाड़ी तो पातला आलड़ा हर कोई खरीदवामां ज्यादा रुचि रहेशे अने तीनी हारू आपुन इनी किस्मीनो पूसा मंजरी जेवी किस्मीनो किसान भाई वापरी सके अने ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाई सके। इनी साथे हाथे किसान भाइयों हा हूं तमने अगली किस्मना बारेमां बतावा जाऊं। तो आजाद नूतन। तो किसान साथियों इनी किस्मनो जो काफी प्रसिद्धि प्राप्त करी से, क्योंकि इनमा बीज नी बुवाई था लगाड़ी ने साहेड़ दन नी बाद मा ही फल आलवा चालू करना कैसे अने फल एक किलो थी डेढ़ किलो तक रेसे वजन नी अने डेढ़ किलो वजन तक नो फल मळे से अने लांबा रहे से। तो किसान साथियों फल हमेशा गोटा हरकू रहे लांबू रहे आपण आलड़ा नी फसल में हमेशा भले खेतरू भी मोटू रहे लेकिन तीनी मोटाई कम रहेवी जोईए लंबाई ज्यादा रहेवी जोईए ताकि इना ने खरीदवा में ज्यादा रुचि राखे से। तेना कारण भी किसान भाइयों ने ये इनी ज्यादा उत्पादन मळे।

0: અનુભવ થાય જાય કે આપણી જગામાં કઈની કિસ્મ અસલ તરફથી પાકી શકે. તો કિસાન સાથીઓ, હાવ એના કરેલાની ફસલનો ઓરવાનો સમય. તો ઉનાળાના ટાઈમ પર કિસાન ભાઈઓ ફસલની બુવાઈ ફરવરીથી લગાડીને માર્ચ તક થાય છે અને સુમાહાની ફસલની જો બુવાઈ છે જૂન જુલાઈમાં કરી જાય છે. તો કિસાન સાથીઓ, અધિકતર આપણને એની ફસલનો ઓરવાના જો સમય રહેશે તેનો ઘણો અસલી તરફથી ધ્યાન રાખવો જોઈએ. અગર ઓરવાના સમયમાં કિસાન ભાઈ આગો પાછો થઈ જાય તે કિસાન ભાઈને નુકસાન ભી ઉઠાડવો પડે છે. અને સહી સમય પર અગર આપણી એના કરેલાની સમય પર ઉગી જાય તો તેના ટાઈમ પર તેના તાપમાન ને તે આરામથી સહી શકે. તેની હારું એનો સમયનો ઘણો ધ્યાન રાખવો જોઈએ. અને કરેલાના બીજની તો કિસાન સાથીઓ, એક હેક્ટર હારું 5 થી 6 કિલોગ્રામ બીજ પર્યાપ્ત રહેશે અને એક જગાથી 2 થી 3 બીજડા અને 2.5 થી લગાડીને 5 સેન્ટીમીટરની ઊંડાઈ તક ઇના ઓરવું જોઈએ. અને બીજને ઓરવાથું પહેલું 24 ઘંટા તક પાણીમાં ભીગાડીને રાખવું જોઈએ તાકિ એ ઉગવામાં બડી આસાનીથી ઉગી જાય. તો કિસાન સાથીઓ, એનો અંકુરણ બી વેગો થાય છે અને જમીનમાં બફાઈની અને બીજ હળવાનો ડર બી ખતમ થઈ જશે. તે કિસાન સાથીઓ, હંમેશા એના 24 ઘંટા પાણીમાં ભીગાડીને ઓરવું જોઈએ. તો હાવ કિસાન સાથીઓ, કરેલાના આપણ બુવાઈની વિધિ. કરેલાની બુવાઈ નાળીઓમાં કરવી પડે છે, યાને કે આપણું એક ધોરા બનાવીએ અને ધોરાની બાદમાં નાળીમાં ઇહુની સોંપવું પડે છે. અને નાળીઓની જો આપસી દૂરી કિસાન ભાઈ પર આપસી દૂરી ઇહુની 1.5 થી લગાડીને 2.0 મીટરમાં અને પૌધાથી પૌધાની દૂરી જો 1 મીટર રાખવી જોઈએ. એક જગા પર 2 બીજડા અને 2.5 લગાડીને 4.0 સેન્ટીમીટરની ઊંડાઈ પર કિસાન ભાઈને કરેલાના બીજડા ઓરવા જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, ખાતર અને ઉર્વરક. તો ખાતર અને ઉર્વરક કિસાન ભાઈને કરેલામાં કી કમ આલવું જોઈએ. અને અગર આપણ ખાતર અને ઉર્વરકનો સહી તરફથી ધ્યાન નીમળે અને સહી સમય પર નિયાલ્યું તો ફસલ કાફી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેની હારું કિસાન ભાઈઓ ગોબરનું ખાતર યા કમ્પોસ્ટ ખાતર 250 ક્વિન્ટલ, નાઇટ્રોજન 100 કિલો, ઇસ્પુર 50 કિલો અને પોટાશ 50 કિલો પ્રતિ હેક્ટરના હિસાબથી કરેલાની ફસલમાં જરૂરત પડે છે. ખેતરની જો શરૂઆતી અવસ્થામાં ખેડવાથું પહેલું ગોબરના ખાતરને બરાબર રૂપથી વખેરી દેવું જોઈએ અને મીટી પલટવાવાળો હળથી આપણ કિસાન ભાઈ જુતાઈ કરી નાખવી જોઈએ. યા અગર કિસાન ભાઈ આપણી કન મીટી પલટવાવાળું હોળ નહીં હોય તો કિસાન ભાઈ આડો અને ટેડો વખર સલાડીને બી એનો કરેલાની ફસલમાં એનો ઉપયોગ કરી શકે. નાઇટ્રોજનની જો આધી માત્રા અને ફોસ્ફરસ અને પોટાશની પૂરી માત્રાની જો ખેડવાના ટાઈમ પર જમીનમાં નાખી દેવાનું અને નાઇટ્રોજનની જો વસેલી શેષ માત્રાને 2 ભાગોમાં બરોબર વાટીને 2 હિસ્સામાં 4 થી 5 પાયડા અગર કરેલાના થઈ જાય તો એના ટાઈમ પર નાખવું જોઈએ. અને બીજી વારીમાં ફૂલ નીકળવાના ટાઈમ પર ટાપ ડ્રેસિંગની રૂપમાં કિસાન ભાઈ પૌધાના ચારો તરફ ગોળો બનાવીને નાખી દેવું જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, એ થાય કરેલાના ખાતર અને ઉર્વરકની વાત. તો હાવ કિસાન ભાઈઓ, સિંચાઈ કરેલામાં કી કમ કરવી જોઈએ. તો કિસાન સાથીઓ, સિંચાઈ અને યુ પાણી સમય પર કઈના ટાઈમ પર આલવ જોઈએ યુ ઘણું કિસાન ભાઈને એની વાતનો ઘણો અસલ ધ્યાન રાખવો જોઈએ. અગર કિસાન ભાઈને સહી જાણકારી સિંચાઈની નહીં રહે તો મોસમના અનુસાર જેવી રીતે ગ્રામ સેવક યા પડોશી કઈના કિસાન અનુભવી કિસાનથી જાણકારી લઈને સમય સમય પર સિંચાઈ કરવાના તરીકાને શીખી લેવું જોઈએ. અને ઉનાળાની ફસલની જો સિંચાઈ છે કિસાન ભાઈઓ, चार थी पांच दिन अंतर पर करतु रहू जी केम की जमीन नी जेवी रीते नमी खत्म थवा पर तुरंत किसान भाई ने पानी आलू जी तो किसान साथियों पानी ज्यादा आलवा थी भी पौधा में नुकसान थाई सके अने कम आलवा थी भी नुकसान थाई सके तो किसान साथियों इनी हारू आपन घणी ध्यान राखवी जोईए तो किसान साथियों ये वात थाई आहो पानी नी अने हाउ तोड़ाई अने इहुनी उपज तो कारेला नी तोड़ाई की कम करवी जोईए अने कईना टाइम पर करवी जोईए अने इनी उपज केतरी देवी जोईए तो किसान साथियों तोड़ाई फलों नी जो तोड़ाई जो कुआ कुआ रहे तीना टाइम पर करवी जोईए अने तीनों बजार में किसान भाई ने असली मूल मळे छे साधारणत बोवाई ना 60 था 70 दन ने बाद मा तीना करेला ना फल तोड़वा लायक अने खावा लायक अने वेचवा लायक थाई जाय छे तो किसान साथियों हाउ करेला नी जो प्रति हेक्टर थी जो उपज किसान भाई ने मळी सके अने उनाळाना टाइम पर या काफी असल इहुनो मूल मळे छे तो किसान साथियों प्रति हेक्टर हो थी लगाड़ी ने 125 क्विंटल तक किसान भाई ने करेला नी फसल नी उपज मळे छे तो किसान साथियों मैं हमने तमने इहुनी करेला नी उपज अने सिंचाई खातर उर्वरक अने ओरवानी विधि अने बीजनी मात्रा अने ओरवानो समय અને તીહુની કિસ્મીઓ અને જમીનના બારામાં અને ઉન્નત કિસ્મીના બારામાં જાણકારી અને જળવાયુ કેવી રહેવી જોઈએ એવી મેં તમને આગલી અલગ અલગ પ્રકારની જાણકારી હમળાવી
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર
1: તમે હમળી રહેશે કાર્યક્રમ
2: ખેતીવાડી
1: આપણા છાપવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर
3: हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए काफी लाभकारी होती हैं। ये सब्जियां सेहत से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन मिनरल और इसके अलावा कई तरह के और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। इन्हीं में से एक है पालक। जी हाँ, पालक की बात करें तो इसमें भी मिनरल विटामिन और साथ ही साथ आयरन भी काफी ज्यादा होता है। पालक से बने हुए कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम साल भर खाना पसंद करते हैं और इसीलिए पालक की मांग भी बाजार में बनी रहती है। ऐसे में हमारे किसान पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान कर सकते हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती। अपने रंग स्वाद और सेहत से भरपूर होने की वजह से पालक की मांग पूरे साल बनी रहती है और लोग इसे पूरे साल अपने भोजन में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे किसान पालक की उचित तरीके से खेती कर अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं पालक की खेती से जुड़ी कुछ विशेष बातें।
4: पालक मुख्यतः शीतकालीन फसल है लेकिन इसे पूरे साल भर उगाया जा सकता है, इसलिए इसे सदाबहार सब्जी भी कहा जाता है। पालक का मूल स्थान केंद्रीय और पश्चिमी एरिया है और ये अमराथा सीएई प्रजाति से संबंध रखती है। वैसे तो पूरे विश्व में इसकी खेती की जाती है। भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पालक सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। ये आयरन, विटामिन का उच्च स्रोत और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके बहुत सारे सेहतमंद फायदे हैं। ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। ये पाचन के लिए, त्वचा, बाल, आँखों और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे कैंसर रोधक और एंटी एजिंग दवाइयाँ भी बनती हैं। पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है जिस वजह से ये शरीर में खून की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है।
5: पालक एक ऐसी फसल है जो ट्रॉपिकल रीजन की उत्तर भारत की सबसे मेन फसल है। पत्ती वर्गियों में यह क्या होता है, विंटर में ग्रो किया जाता है। पालक में विटामिन ए सी पाया जाता है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन पाया जाता है। पत्तियों की जो लीफ होती है इसमें लो मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है।
4: पालक से कई तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं जैसे पालक का साग, चटनी, दाल और पालक की चपाती, जो लोग बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं।
5: डिश की बात करते हैं तो पालक पनीर है, पालक पनीर में सब्जी भुजिया बहुत सारी तरह से डिश है जो हमको बना कर किसका हम यूज कर सकते हैं।
3: फसल चाहे कोई भी हो, ऐसे में खेती से जुड़ी विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। पालक की खेती से भी ये बातें जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे किसान पालक की खेती में अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं।
4: उच्चतम पैदावार हासिल करने के लिए सर्दी का मौसम पालक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सर्दी के मौसम में 5 से 6 कटाइयां एक फसल से प्राप्त हो जाती है। वहीं गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण किसान भाइयों को एक ही कटाई मिल पाती है।
5: इसकी बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते रहते हैं।
4: चाहे मौसम सर्दी का हो गर्मी का, पालक की खेती करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना किसान भाइयों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होता है।
5: क्लाइमेट की बात करते हैं तो विंटर सीजन क्लाइमेट है, इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कर सकती है। पालक एक ऐसी फसल है जो गर्मी और पाला दोनों को सहनशील कर सकती है, ऐसी फसल है पालक।
4: पालक की खेती किसी भी मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 7 से 8.5 होना सही होता है। बीजों की बुआई से पहले खेत को 3 से 4 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही खेत में छोटी छोटी क्यारियां और सिंचाई की नालियां बना लेनी चाहिए।
5: हम पालक को किसी भी प्रकार के सोइल में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सैंडी लोम सोइल जिसका सोइल पीएच मान 7 हो, न्यूट्रल हो, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ अधिक हो और जल निकास की मात्रा अधिक हो, ऐसी सोइल में हम इसको हम ग्रो कर सकते हैं।
4: पालक की उन्नत किस्मों की बात करें तो कई प्रजातियां प्रमुख हैं। बेहतर उत्पादन के लिए पालक की ऑल ग्रीन, जोबनेर ग्रीन, पूसा हरित, पंजाब ग्रीन और पूसा ज्योति किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिसमें ऑल ग्रीन एक ऐसी किस्म है जो बुआई के 20 से 25 दिनों बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसकी औसतन कुल 6 से 7 कटाई की जाती है। पालक की पूसा हरित किस्म देश के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी पूरे साल उगाई जा सकती है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग और बड़े आकार के होते हैं। इसमें बीज बनाने वाले डंठल देर से निकलते हैं, इसलिए बुआई के बाद कई बार इस किस्म की कटाई कर सकते हैं। वहीं इसे तैयार होने में 35 से 40 दिन लगते हैं। पूसा ज्योति किस्म पालक की एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चलने वाली किस्म है। इसके पत्ते बेहद मुलायम और बिना रेशे वाले होते हैं। इस किस्म को अगेती और पछेती जब चाहे उगाया जा सकता है। बुआई के करीब 45 दिन के बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है। वहीं इसकी लगभग 7 से 10 बार कटाई की जा सकती है। अधिक पैदावार वाली इस किस्म से लगभग 18 से 20 टन प्रति एकड़ उपज मिलती है।
5: बहुत सारी वैरायटियां पंजाब की हैं, जैसे पंजाब की है पंजाब ग्रीन है, पंजाब ग्रीन जो पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है, इसकी उपज 30 टन पर हेक्टेयर होती है। और इसके अलावा आल ग्रीन वैरायटी है, जो आल ग्रीन वैरायटी है बहुत फेमस वैरायटी है, इसकी पत्ती टेंडर होती है और इसकी कटाई 7 से 8 बार करते हैं, कम से कम 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। आल ग्रीन की बहुत फेमस वैरायटी है। और जोबनेर की वैरायटी है पंजाब जोबनेर जो है, ये वैरायटी इसकी लीफी वैरायटी डेवल होती है, एक चौड़ी पत्ती वाली होती है, डार्क ग्रीन कलर की वैरायटी होती है जोबनेर वैरायटी जो होती है। और लेटेस्ट वैरायटियां जो है इसकी पूसा भारती जो है आई राइस रिलीज हुई है, लेटेस्ट वैरायटी है, इसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है, 50 टन पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाई जाती है।
3: आज हम बात कर रहे हैं पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखें। पालक की खेती में भी ये बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान बुआई के बाद उसकी सिंचाई पर विशेष ध्यान दें ताकि किसी भी तरह का लॉस उन्हें ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, पालक के बीजों को भारत के सभी क्षेत्रों में पूरे वर्ष ही लगाया जाता है, लेकिन इसकी रोपाई के लिए सितंबर और नवंबर के माह को उपयुक्त माना जाता है। जुलाई के महीने जिस दौरान बारिश का मौसम होता है, तब इसके पौधे आसानी से उगाते हैं। पालक के बीजों की रोपाई को कई तरीकों से किया जा सकता है। पहला रोपाई विधि द्वारा और दूसरा छिड़काव विधि द्वारा। रोपाई विधि में पालक के बीजों की मेड़ों पर रोपाई की जाती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है। वहीं छिड़काव विधि में प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। पालक के बीजों को खेत में रोपाई करने से पहले उन्हें वाविस्टिन या कैप्टान दवा की उचित मात्रा से उपचारित कर लेना चाहिए। रोपाई विधि द्वारा बीजों को रोपाई करने के लिए खेत में क्यारियों और मेड़ को तैयार कर लिया जाता है। इन पंक्तियों को तैयार करते समय प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 फीट की दूरी अवश्य रखें तथा पंक्ति में लगाए गए बीजों के 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। इसके बीजों को खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में लगाना चाहिए, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छी तरह से हो। इसके अलावा छिड़काव विधि से भी बीजों को खेत में लगाने के लिए खेत में उचित आकार की क्यारियों को तैयार कर उन क्यारियों में छिड़क दिया जाता है। इसके बाद हाथ या किसी औजार की सहायता से बीजों को खेत में दबा दिया जाता है।
2: सीड रेट की बात करते हैं, देसी वैरायटी है, जो अर्ली वैरायटी है, जो सब हम बरसात के लिए ग्रो करते हैं, इसमें 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज का हम यूज करते हैं। और जो समर वाली ग्राफ है, जो गर्मी में लगाते हैं, गर्मी में 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से इसके हम बीज का यूज करते हैं।
1: किसी भी फसल के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, जिससे खेत में मृदा की नमी बनी रहे और बीजों का अंकुरण और विकास अच्छी तरह से हो। पालक की अच्छी फसल के लिए गर्मी के महीने में 4 से 6 दिनों के फासले पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि सर्दियों में 10 से 12 दिनों के फासले पर सिंचाई करें। फसलों में सिंचाई जरूरत के अनुसार ही करें। ध्यान रखें कि पत्तों के ऊपर पानी ना रहे, क्योंकि इससे फसल के गुणवत्ता में कमी तो आती ही है, साथ ही फसल में कीड़े और कीट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पालक की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति काफी लाभदायक होती है।
2: अगर फर्टिलाइजर मैन्योर की बात करते हैं, तो इसमें फर्टिलाइजर मैन्योर की कोई खास ज़्यादा जरूरत नहीं होती किसान भाइयों, क्योंकि इसमें लीफी वेजिटेबल है। लीफी वेजिटेबल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अधिक होती है, नाइट्रोजन इसमें हम देते हैं। और इसमें कुछ क्या करते हैं, फॉस्फोरस भी देते हैं। फॉस्फोरस देते हैं 30 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन देते हैं 80 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। नाइट्रोजन कब देते हैं, जब पहली कटिंग कर लेते हैं। पहली कटिंग करने के बाद उसमें नाइट्रोजन की हाफ डोज देते हैं, और इसके बाद फिर जो दूसरी कटिंग करेंगे तो बची हुई डोज नाइट्रोजन के देते हैं, और इसके बाद हम पानी का सिंचाई देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो।
0: हरी सब्जियां जहां सेहत से भरपूर होती हैं, देखने में मोहक लगती हैं, वही कीट और बीमारियों का खतरा भी इनमें बना रहता है। ऐसे में पालक की खेती में भी बहुत आवश्यक है कि उचित तरीके से कीट और बीमारियों का प्रबंधन किया जाए ताकि फसलों में उसका नुकसान ना हो और फसलें सुरक्षित रहें। आइए जानते हैं पालक की खेती में कैसे करें किसान कीट और बीमारियों का उचित प्रबंधन।
1: अन्य किसी भी फसल की तरह पालक में भी कई तरह के कीट और बीमारियां लगने का खतरा होता है, जिनमें से एक है आर्द्र गलन। ये पालक की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारी है, जो कि नर्सरी में नई पौधों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे मर जाते हैं तथा नीचे से मुड़ जाते हैं। इसके प्रकोप से फसल को बचाने के लिए खेत में जल जमाव से पौधों को बचाना चाहिए, साथ ही बुवाई के पहले बीज को ट्राइकोड्रमा नामक जैविक से उपचारित करना चाहिए। नर्सरी का स्थान रोग मुक्त तथा उपचारित मृदा में ही करना चाहिए। वहीं पत्ता धब्बा पालक में सरकोसपोरा बेटिकुला नामक फफूंद के द्वारा हो जाते हैं। संक्रमण के कारण पत्तियों पर बहुत से संकेंद्रीय छोटे छोटे भूरे रंग के वृत्ताकार धब्बे बन जाते हैं। आरंभिक अवस्था में ये धब्बे

0: एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं। बचाव के लिए बुवाई से पूर्व ही बीज को उपचारित करें। ब्लाइटॉक्स दवा के 3% घोल का छिड़काव करना लाभदायक होता है। पर्णचित्ती रोग भी पालक में लग जाते हैं। यह फाइलास्पिकता प्रजाति नामक फफूंद के कारण होता है। रोग का लक्षण हल्के पीले रंग के सूक्ष्म बिंदु के रूप में दिखता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल चक्र की विधि को अपनाना चाहिए। प्रभावित फसल पर डाइथेन Z78 के 3% घोल का छिड़काव करना चाहिए। मृद रोमिल आसिता बीमारी पालक में पेरोनोस्पेरा इफ्सा नामक कवक के द्वारा होते हैं। रोग का लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रुई की तरह उभरे हुए या सफेद या पीले रंग के फफूंद के रूप में प्रकट होता है और बाद की अवस्था में धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। रोग की उक्त अवस्था में पत्तियां सूख जाती हैं। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इन सब उपचारों के अलावा किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि विशेषज्ञों से जरूर संपर्क करें और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए।
1: अगर उपज की बात करें तो उपज कम से कम इसकी 50 से 60 टन तक बहुत अच्छी उपज होती है पालक की। किसान भाई ऐसी खेती करते हैं तो इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। पूरे वर्ष आप जहां पे क्लाइमेट कम होता है वहां ठंडी कम पड़ती है, यहां पे इसको हम पूरे वर्ष ग्रो कर सकते हैं।
2: वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं पालक की खेती के बारे में, इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती से जुड़ी कुछ और बातें जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए अथक प्रयास करना होगा, और कृषि का क्षेत्र भी ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें काफी श्रम लगता है। लेकिन अगर किसानों को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं होती। आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले कौशल मिश्रा से, जिन्होंने पालक की खेती में नए नए प्रयोग किए और वो बन गए हैं कामयाब किसान। आइए जानते हैं उनसे कुछ खास बातें।
1: कौशल मिश्रा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके पिता एक किसान थे जो परंपरागत तरीकों से खेती करते थे। वैसे तो कौशल मिश्रा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी भी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। इन्होंने गन्ने की खेती से शुरुआत की, बाद में सब्जियों खासकर पालक की खेती करने लगे, जिससे इनके गाँव के लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ।
2: मेरे पिताजी परंपरागत खेती करते थे, मैंने भी कुछ दिन नौकरी की। नौकरी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना खेती करूं, चूंकि मेरे गांव में 100 परिवार हैं तो उनको भी रोजगार मिलेगा। मैंने गन्ने की खेती शुरू की। उसके बाद मेरे मन में आया कि आसपास लोग सब्जी का उत्पादन नहीं होता, उसको लेकर के मैंने कई तरह की सब्जियों का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ का जो मौसम और मिट्टी और पानी का जो वो है वो बहुत अच्छा है, तो मैंने पालक का की खेती शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद मैंने देखा कि पालक में आप अच्छे से अगर गुड़ाई नराई करके बुआई करते हैं तो पालक का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है, और मैं करीब 1 एकड़ खेती में पालक करता हूं और पालक का उत्पादन लगातार 6 महीने तक मिलता है। आप अगर अगस्त में बुआई कर देंगे तो आपको पालक का 6 महीने का समय मिलेगा और मार्च तक लगातार पालक निकलेगी।
1: इन्होंने 1 एकड़ खेत में पालक की वैज्ञानिक तरीके से खेती करना शुरू किया, जिससे इन्हें लगातार 6 महीने तक पालक प्राप्त होता है। उत्पादन की बात करें तो कौशल मिश्रा बताते हैं कि 1 एकड़ खेत में पालक की खेती करने पर इन्हें टनों में पैदावार हासिल होता है, जिसे वो बाजार में बेच कर अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। कौशल मिश्रा ने अपने गाँव के अन्य किसानों को परम्परागत खेती के मुकाबले सब्जियों खासकर पालक की वैज्ञानिक विधि से खेती कर लाभ अर्जित करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके।
2: पालक कुंटलों में नहीं 1 एकड़ में टनों का उत्पादन होता है, जिसका मार्केट में रेट कभी कभी अप और डाउन होता है, लेकिन कभी भी 15 रुपए से किलो से कम की नहीं बिक्री होती है, और इसका रेट 25 रुपए से 30 रुपए तक का रहता है, जो हमारे यहाँ की लोकल मार्केट है। लेकिन इस किसान के लिए वही फसलें करनी चाहिए जिससे प्रतिदिन पैसा मिले, जिससे उसके परिवार, उसके साथ काम करने वाले लोग, उनको रोज पैसा मिले। गेहूं और धान और गन्ने में परंपरागत 6 महीने और 1 साल के बाद पैसा मिलता है। उसके साथ में अगर हम इस तरह से सब्जी का काम करते हैं, और खासकर पालक एक ऐसी सब्जी है कि जो लगातार हर घरों में खाई जाती है, और जिसका प्रयोग आप देखिएगा कि अगर पनीर बनेगा तो उसमें भी पालक पड़ेगी, पकौड़ी बनेगी तो उसमें पालक की जरूरत पड़ेगी। पालक लगातार लोग दाल के साथ पालक खाते हैं, पालक अलग अलग तरह से बनाई जाती है, तो जिसका प्रयोग खाने में तरह तरह से लोग करते हैं, जिसका जैसा टेस्ट होता है। और जब आप 1 एकड़ में लगा देंगे तो प्रतिदिन आपकी मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी आप पालक ले जाइए, आपको अच्छा रेट मिलेगा, प्रतिदिन पैसा मिलेगा। तो मेरा किसान भाइयों से सुझाव है कि आप लोग परंपरागत खेती छोड़कर इस तरह की भी खेती करें कि जिससे आपको प्रतिदिन पैसा मिले। आज जितनी दवाइयां प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा रोग आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती करूँ, जिससे रोग कम से कम आए और साफ सुथरी सब्जी समाज को दूँ, बाजार में जाए। मेरा रेट भी अन्य लोगों से 2-3-4 रुपए किलो ज्यादा रहता है।
1: वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी भी फसल की खेती करना बेहद लाभप्रद साबित होता है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और वैज्ञानिक सलाह। विशेषज्ञों की सलाह लेकर किसान अधिक से अधिक पैदावार हासिल करने में सफल हो सकते हैं। पालक की खेती भी वैज्ञानिक विधियों से कर किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे जल्दी तैयार होने वाले फसलों में से एक है, जो लगभग 30 से 35 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी सब्जियों की तुलना में कम लागत लगती है। किसान पालक को पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए पालक की खेती बड़े पैमाने पर कर सकते हैं।
3: तो सालो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई बात हामली सब्जी वर्गी खेती नी, इनामा आपुई लौकी एतरे नई नी खेती नी बात करी, करेला नी खेती नी वात्यो हामलियो, अने जाता जाता आपुई पालक नी खेती नी पण विस्तार पूर्वक वात्यो हामलियो। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में बस एतरी बात, केम के हाव समय थाय गयो छे बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग आपकी ही सेहत के संग के इस प्यारे से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड कई चीजों के बारे में हम जाने, अवेयर हों और अपना ही ख्याल रखना शुरू करें। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल की है, वो हमारी मदद के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए हमेशा हैं। लेकिन डॉक्टर्स खुद भी कई बार कहते हैं कि आप लोग अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि जब आप ज्यादा ही तबीयत खराब करके डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं जब वो आपको ठीक नहीं कर पाते। उसी पर्पस से, उसी उद्देश्य से हम डॉक्टर्स को इस प्रोग्राम में ला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं, जिससे कि वो आपसे बात कर सकें। आज हमारे प्रोग्राम में सीनियर कंसल्टेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण खरात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा, छोटा सा, दो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अवर लिसनर्स अबाउट यू, बट फिर भी थोड़ी सी उनसे बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दें।
1: थैंक यू वेरी मच समीर, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण खरात, आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आई प्रैक्टिस इन पुणे, और हिंदी में तो अस्थि रोग तज्ञ कहते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं अभी पुणे में 20 साल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले आई प्रैक्टिस्ड इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम फॉर 15 ईयर्स।
0: Oh my God.
1: Came back to India in 2005. So this sort of coincided with the movie Swadesh.
0: Ji. Oh. And, so cute.
1: And really, at that moment, the song was my anthem.
0: Mm-hmm.
1: बिकॉज आपका म्यूजिकल प्रोग्राम है, रेडियो शो है
0: जी,
1: और ए आर रहमान जी का जो गाना था ये जो देश है तेरा,
0: इट
1: वाज माय एंथम सॉन्ग एट दैट टाइम व्हेन आई केम बैक। या
0: बहुत बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है साहब, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है और बड़ी ही प्यारी बात कही। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर किरण लव्स हिज कंट्री सो मच कि उन्होंने उस प्यारे से सॉन्ग को अपना एंथम कहा है। कितनी खूबसूरत बात है ये, बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो दोस्तों क्यों ना प्रोग्राम शुरू करें डॉक्टर किरण के ही एंथम को, इस प्यारे से गीत के एक मुखड़े को सुनकर आगे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है।

0: तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में हमारे सिंपल ऑडियंस के लिए ये पूछना चाहूंगा कि हमारा पूरा शरीर एक ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है जिसको हड्डियां या बोन्स कहते हैं। इसके बिना कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बीइंग इस दुनिया में प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस कमाल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जरूर समीर जी, आपने ठीक कहा। एक्चुअली आई कैन रीफ्रेज इट एंड टेल यू दैट बोन्स आर आर बॉडीज अनसंग हीरोज।
0: वाओ।
1: या हड्डियां हमारे शरीर के गुमनाम गायक है। और सचमुच इट कीप्स अस गोइंग बिकॉज जैसे कि इट्स लाइक अ स्कैफोल्ड, यू नो, जैसे अपना घर का जो फ्रेम होता है
0: जी,
1: तो वैसे ही अपना जो बोन स्ट्रक्चर है इट इज मेड ऑफ लिविंग टिश्यूज लाइक कोलेजन, जो हेल्प्स फ्लेक्सिबिलिटी, कैल्शियम विच इज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, एंड ऑल्सो द बोन्स प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स लाइक द स्कल, यू नो, इट गार्ड्स आवर ब्रेन, and the bone marrow helps grow blood cells. So सचमुच अद्भुत है। हड्डियां जो एक भरोसेमंद ढांचा है हमें मजबूत रखती है, और सचमुच इस हड्डियों के वजह से हम खड़े रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वरना we would all be like jellyfish, you
0: know, yes, very yes,
1: flexible and won't be able to hold ourselves together.
0: बहुत खूब, आपकी बिल्कुल इसी बात से मुझे ख्याल ही आ रहा था कि अगर हड्डियां ना होती तो हम तो जेलीफिश के जैसे होते, कहीं भी पड़े होते, ना खड़े हो पाते, ना मूव कर पाते, वी वुड हैव बीन सो यू नो वल्नरेबल। हड्डियां हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं जिसमें हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। मोर ओवर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने दोस्तों को जरूर जरूर बताना चाहूंगा, आपने भी अभी अभी मेंशन किया कि जो जीवन अमृत है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को जो चीज बनाती है दैट इज बोन मैरो, वो बोन्स के अंदर होता है। बोन्स उनको

0: प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ब्लड के, जो एक्चुअली हमारे हर चीज को बनाते हैं, उनको भी स्टेम सेल्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी इन्हीं वॉरियर्स का है, इन्हीं अनसंग हीरोज का है, जैसा डॉक्टर किरण ने बहुत एप्रोप्रिएटली कहा। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से दोस्तों को आज अपने बोन्स, अपने हड्डियों से मोहब्बत होने वाली है, उन्हें पता चलने वाला है कि वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं। तो डॉक्टर साहब, वैसे ये बोन्स, ये अनसंग हीरोज, ये वॉरियर्स बनते कैसे हैं, और किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि बचपन से ही बोन्स मजबूत होती चली जाए?
1: एब्सोल्युटली, हड्डियां ऑसिफिकेशन से बनती है। सो बच्चों की हड्डियां नरम होती है, तो अगर बच्चों को फ्रैक्चर होता है तो हम उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, बिकॉज वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होते, जहां की बुजुर्ग लोग जब उनकी फ्रैक्चर जब होते हैं, ब्रिटल बोन्स या फ्रेजाइल बोन्स होते हैं, तो चौक चौक की तरह वो ब्रेक होते हैं और काफी काफी उसके टुकड़े होते हैं, और यही फर्क है बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में। तो ऑसिफिकेशन से ये बन जाती है, और अपने शरीर में हर हड्डी पे एक ऑसिफिकेशन सेंटर होता है जिसे एपिफाइसिस कहते हैं, और साधारण 17-18 साल तक वो अपना काम करता है, फिर बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं, और तब जो फाइनल हाइट फीमेल या मेल की हो जाती है, और उसे बरकरार रखने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, मैं मेरे पेशेंट्स से कहता हूं कि यू नो, सिंपल थिंग्स लाइक प्रॉपर कैल्शियम रिच फूड्स, यू नो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, सनलाइट एक्सपोजर, धूप में जाना फिरना, अच्छा खाना, फिश या अच्छे हेल्दी फूड्स लाइक टोफू, पनीर, इवन वॉकिंग, लिफ्टिंग वेट्स, योगा, स्विमिंग, एनी वेट बेरिंग एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली धूम्रपान और शराब से वंचित रहना चाहिए, बिकॉज दिस डायरेक्टली affects our bones and skeletal system.
0: बिल्कुल ठीक, amazing. आपने बिल्कुल perfect कहा कि अगर हम अपना ख्याल रखें, कुछ अच्छे nutritions, exercise और कुछ व्यसनों से दूर रहें, तो हम अपने bones की strength को, उनकी integrity को maintain कर सकते हैं, मजबूत बनाए रख सकते हैं। Absolutely fine. अब डॉक्टर साहब, बोन्स का यानी कि हड्डियों का टूटना फूटना, तो जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों की भी हड्डियां टूटती हैं, तो उनको ग्रीन फ्रैक्चर बोला जाता है, कि भाई ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं, थोड़ा सा जल्दी जुड़ भी जाती हैं। ये टूटना फूटना तो बचपन से चलता रहता है, अब इसके कुछ कुछ कारण तो रहते ही होंगे, मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं, गिर पड़ा कोई या किसी कहीं जगह पर टक्कर लग गई, समथिंग लाइक दैट, और उन्हें आप लोग ठीक भी कर देते हैं कि भाई ठीक है, प्लास्टर किया या सेट किया। लेकिन कुछ जगहों से सर ये भी क्वेश्चन आए थे कि बिना किसी कारण के भी बोन्स टूट जाती हैं। एक दो फिल्में भी देखी डॉक्टर साहब, जिसमें कुछ बहुत रेयर बीमारी थी कि अगर जरा सा भी धक्का उस व्यक्ति को लगता है तो उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं, वो क्या होता है डॉक्टर साहब?
1: बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इट इज कॉल्ड द साइलेंट डिजीज, बिकॉज पेशेंट्स डोंट नो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, और पुराने जमाने में बुजुर्गों में ये दिखता था, लाइक इन वेरी एल्डरली पीपल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, इट वाज वेरी कॉमन, बट द ट्रेंड अभी जो है, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी जॉब्स, लैक ऑफ सन एक्सपोजर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइट एंड बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नो अटेंशन टू सेल्फ इन टर्म्स ऑफ अलाउिंग द बॉडी वेट टू इंक्रीज, all these things add up, you know. So basically, क्या होता है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो बिना कारण हड्डी टूट जाती है. मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो इवन स्नीजिंग या छींकने से भी उनकी कुछ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं. अभी अभी एक फ्रेंड का फोन आया कि वो बस में कहीं जा रहा था और बस स्पीड ब्रेकर से जोर से चली गई और वो जो पैसेंजर्स थे दे वेंट अप इन द एयर एंड यू नो फेल ऑन द सीट और उसकी वजह से उसको कॉक्सेक्स फ्रैक्चर भी हो गया.
0: ओह माय गॉड.
1: तो वो भी हो सकता है. फिर कभी कभी पेशेंट्स को जब कैंसर जैसे बीमारी हो जाती है तो कैंसर कैन स्प्रेड इनटू बोन्स. इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस एंड दैट एरिया बिकम्स वीक एंड देन द फ्रैक्चर कैन हैपन थ्रू द मेटास्टेटिक लीजन एंड यू नो. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड fragility fractures. So in very very weak bones, even a small stumble, like thoda bhi gir gaye aap ya thodi si bhi kuch chot aa gayi to fracture zarur ho sakta hai because wo taakat ab wo bone mein nahi hai.
0: Okay, all right. Now doston, यूं तो सुनने में थोड़ा सा स्केरी, थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डॉक्टर किरण जैसे स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं सो यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड, यू नीड नॉट टू अफ्रेड. आप बिल्कुल सेफ हाथों में हैं. उनकी काउंसलिंग, उनके बातचीत आपको बता सकती है कि व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए. वैसे मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है एंड देन ठीक है बोन मेटास्टेसिस की बात होती है कैंसर पेशेंट्स में, लेकिन क्या ये इंसिडेंसेस बहुत रेगुलर है या थोड़े से रेयर है?
1: एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस इज क्वाइट कॉमन अनफॉर्चुनेटली. जैसे हमारी जो लाइफ का एज स्पैन है वो अब बढ़ चुका है, यू नो ओल्डन डेज 40-50 वाज ओल्ड बट नाउ 80 पीपल आर लिविंग अप टू 80s 90s एंड इवन 100s.
0: करेक्ट.
1: आई हैव ऑपरेटेड ऑन पेशेंट्स एज ओल्ड एज 96-97.
0: ओह माय गॉड. ओके.
1: हां, सो द थिंग इज it is not rare but at the same time you know it can be easily detected. So the patients need to be aware. Luckily आजकल information age है तो सबके पास smartphones है, smart TVs है, you know WhatsApp university है,
0: बहुत सारे Google बाबा,
1: Google बाबा है. तो usually patients should be aware और you know basics है, like our ancients used to say, you know drink milk and eat green food and you know exercise. Balanced diet, keep your weight under control. So yeah, basics will never change, no matter which country you live in. So the thing is, yes, it is unfortunately common, and it should not be because it can be easily avoided.
0: बहुत खूब. दोस्तों बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि osteoporosis या ऐसे दूसरे कारण, ऐसे दूसरे रीजंस जो हड्डियों को ब्रिटल बनाते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी टूट जाने के रीजंस हो सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आपको अपने बोनी स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारा अब व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल बाबा एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल जो कि आपको बता सकते हैं कि व्हाट शुड यू डू अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड द बोनी स्ट्रक्चर. डॉक्टर साहब ने कहा वेट आप कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड न्यूट्रिशंस लीजिए, मिल्क. बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. मिल्क से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है. कई बार कई लोगों की एक ये भ्रांति या मिथ, वो बोल देते हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, नहीं होती हैं. लोग कंफ्यूज्ड हैं डॉक्टर साहब. हाउ ट्रू इज दैट?
1: सी एक्चुअली मिल्क डेफिनेटली इज यूजफुल प्रोवाइडेड यू नो इट इज नॉट यू नो डाइल्यूटेड. सो यू नो सचमुच क्वालिटी मिल्क मिलना भी
0: मुश्किल हो गया है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
1: बट एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव लैक्टोज इनटॉलरेंस, दूध
0: नहीं पी पाते,
1: कैन नॉट टॉलरेट एंड आजकल उसके भी अभी ऑल्टरनेटिव्स है, कैशू मिल्क, आमंड मिल्क, सोया मिल्क,
0: ओके,
1: दीज आर एक्सपेंसिव बट अवेलेबल फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट. बट यस, मिल्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु कैन टॉलरेट इट, बट प्रोवाइडेड द मिल्क इज नॉट डाइल्यूटेड एंड यू नो इज एक्चुअली फोर्टिफाइड मिल्क. एक्चुअली बिकॉज ऑफ मिल्क फोर्टिफिकेशन, जो हम पहले डिजीज देखते थे, रिकेट्स वगैरह, अभी आजकल दिखाई नहीं दे,
0: जी बिल्कुल गायब हो गए,
1: बिकॉज गायब हो गए. तो या, मिल्क इज इम्पॉर्टेंट, बट विथ मिल्क प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड वेट बेरिंग एक्सरसाइज रिमेन्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट.
0: आई परफेक्टली अंडरस्टैंड. तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज ये भ्रांति, आज ये मिथ, आज ये कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हुआ होगा. दूध, मिल्क इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप इंटॉलरेंट हैं, अगर आपको दूध सूट नहीं करता है, तो देर आर अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, उनके ऊपर भी हम जा सकते हैं. लेकिन दूध जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अवॉइड करना उचित नहीं होगा. बहुत बहुत सारे फैमिलीज में आज की डेट में देखा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाते, ये मानते हुए कि वेल, दूध तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. गाय या किसी भी एनिमल का अगर हम दूध दे रहे हैं, तो वो उनके बच्चे के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं. ये एक भ्रांति है, कन्फ्यूजन है, इसको दूर कीजिए. तो डॉक्टर साहब, कुछ और भी इश्यूज हैं क्या, कुछ और भी बीमारियां हैं क्या जिनकी वजह से हड्डियां मुसीबत में आ जाती हैं, बेचारी वो कमजोर होने लगती हैं? कुछ और बीमारियां हैं क्या सर ऐसी?
1: सो आई मीन, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बट एजिंग इज वन थिंग विच एवरीवन यू नो इज अफेक्टेड.
0: एब्सोल्युटली.
1: और टाइम वेट्स फॉर नो वन. Aging, you know, it shrinks not only your patience, but it also shrinks your muscles and bones.
0: Correct.
1: जिसे हम sarcopenia भी कहते हैं.
0: जी.
1: और हड्डियाँ भंगूर हो जाती है, सो इसे हम osteoporosis कहते हैं. फिर there are diseases like Paget's disease, which can affect the bone. Then there are hormonal shifts like menopause, even less exercise, you know, bedridden states, जहाँ patient जब उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती है तो द बोन्स बिकम वीक. यू नो, वी नो दैट एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे गो इनटू स्पेस,
0: यस,
1: बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, दे गेट ऑस्टियोपोरोसिस. तो दिस इज अ फैक्ट. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू डू वेट बेरिंग एक्सरसाइज, एंड अति भी नहीं करना चाहिए. आई मीन, देर आर पीपल हु डू एक्सेस एंड यू कैन गेट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऑल्सो. सो दैट इज द अदर एक्सट्रीम. सो it has to be a balanced exercise program which respects your individual body, your stiffness levels, your flexibility levels, but you cannot say I won't exercise, you know.
0: ये तो ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिकॉज कहीं पर मैंने पढ़ा था, अवर बॉडी, द नेचर एक्चुअली हैज मेड अवर बॉडी टू मूव, नॉट टू स्टे स्टिल. हमारी बॉडी को मूव करना ही करना है, अदरवाइज ना तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वुड वर्क, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम हैज गॉट नो पंप्स, अदरवाइज ब्लड हमारा हार्ट से पंप हो जाता है, बट लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम डजंट हैव एनी पंप. तो इसलिए हमें मूव तो करना ही करना होगा.
1: So life is movement and movement is life.
0: Absolutely. That's a very good saying. Beautiful, beautiful. Yeah. Life is movement and movement is life. क्या बात कही. तो लोग सब, वैसे तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ ही रहा था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, किसी भी इंसान का बॉडी जो है वो श्रिंक होने लगती है. अभी मेरे फादर जो है वो 85 इयर्स के हैं, लेकिन वो इतने छोटे से हो गए हैं. किसी जमाने में मतलब ही यूज टू बी क्वाइट जाइंट, बड़ा अच्छा लगते थे, अभी वो इतने छोटे से हो गए हैं. फिर जाहिर सी बात है, उनकी बोन्स तो श्रिंक हुई होंगी, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी मसल्स भी श्रिंक हो गई हैं. एंड ही कीप्स ऑन ट्राइंग टू वॉक सो दैट हिज मूवमेंट हेल्प्स हिज प्रोस्टेट, हिज बाउल मूवमेंट, हिज यूरिनेशन, हिज अदर थिंग्स. सो आपने ऑलरेडी ये चीज बताई कि हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, तो ये सब चीजें संभलती रहती हैं. डॉक्टर साहब, आई कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बढ़ती हुई उम्र में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, पहले शायद डायग्नोस नहीं हो पाता होगा, जॉइंट्स में इश्यू हो जाता है, जॉइंट्स क्रैकिंग की आवाज करने लगते हैं, जो भी जिनकी उम्र बढ़ गई है उनको चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही फेमस ट्रीटमेंट ऑप्शन बनकर निकला है। सो डॉक्टर साहब, आप बीइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, प्लीज हमें बताएं कौन कौन से जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं।
1: एक्चुअली टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने जो पहले कहा कि यू गेव योर फादर्स एग्जाम्पल एंड आई हैव आल्सो सीन मेनी

0: विलेज से उसका बेटा मेरे पास लेके आया था और उसके दोनों नी इतने बेंट थे लाइक अ सी शेप, यू नो धनुष बाण के शेप होते हैं वैसे. तो जब मेरे पास चल के आए तो उसका एक मैंने वीडियो लिया था, चलने चल जब आई थी तो उसका दोनों घुटने में काफी अंतर था और जब ऑपरेशन किया तो उसके दोनों घुटने सीधे हो गए और उसकी हाइट भी बढ़ गई बिकॉज यू नो द डिफॉर्मिटी वॉज करेक्टेड. तो उसका बेटा जब फॉलोअप को आया उसने कहा डॉक्टर साहब जब मेरी माँ गांव चली गई वापस तो उसके पड़ोसी दे कुडंट रिकॉग्नाइज हर कि ये वही औरत है.
1: ओह गॉड, ओके.
0: सो यू नो इट्स रिमार्केबल चेंज एंड दिस पेशेंट हु कुड नॉट वॉक अ सिंगल स्टेप इजीली वॉक.
1: ब्यूटीफुल.
0: सो यस, सो जॉइंट रिप्लेसमेंट इज अमेजिंग ब्लेसिंग यू नो एंड दिस इज आल्सो माय चोजन स्पेशलिटी इन द यूके. 15 साल उधर रह के मैंने अपने आप को इस स्पेशलिटी में सिखाया और काफी एक्सपीरियंस लिया. अब इंडिया में 2005 में आने के बाद आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया विद द फोकस ऑन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड आजकल द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स विच आर रिप्लेस्ड आर हिप्स, नीज, फॉलोड बाय शोल्डर्स, एल्बोज and sometimes ankles and wrists and even the small joints of the fingers and toes can be replaced. So for example agar hindi mein kahe to kul hai ghutne kandhe takne kohni aur kalai inke joint replacements aajkal ho sakte hain apne desh mein.
1: Wow, okay. अमेजिंग. आई मीन दिस आज तक की डेट में डॉक्टर साहब सीरियसली मेरे को ये तो पता था कि हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, लेकिन आई वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर दैट इवन द रिस्ट रिप्लेसमेंट एंड द एंकल रिप्लेसमेंट कुड ऑल्सो बी डन एंड द शोल्डर रिप्लेसमेंट विच इज कंसिडर्ड. मुझे जो ऐसा सुन के भी लगता है कि बड़ा ही टिपिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता होगा बिकॉज शोल्डर को तो आप किसी भी तरीके से प्लास्टर भी नहीं कर सकते, मतलब कैसे. आई मीन
0: सो बट यू आर राइट एंड द शोल्डर रिप्लेसमेंट इज बिकमिंग कॉमन नाउ.
1: ओह माय गॉड,
0: देयर आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हु आर स्पेशलाइजिंग इन अपर लिम एंड शोल्डर सर्जरी. शोल्डर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है, फिर एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है जहां अपना जो कफ है शोल्डर का डेफिशिएंट हो तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट आर वेरी सक्सेसफुल एक्चुअली. एल्बो रिप्लेसमेंट हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं जहां पेशेंट्स को संधिवात होता है जो ऑटो इम्यून डिजीज है. एंकल रिप्लेसमेंट्स भी आजकल होते हैं, प्रमाण कम है लेकिन जरूर होते हैं.
1: Okay.
0: In Russia, I did actually a small joint replacement fellowship as well, where we replaced small joints of the wrist and fingers and even toes using ceramic joints. Yeah, it's all there.
1: तो डॉक्टर साहब ये सारे के सारे जो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं मेजरली नी एंड हिप.
0: एंड हिप
1: ये तो है ही है, बाकी के जो भी अगर इनको हम टोटालिटी में एक बार को एज ए हेलीकॉप्टर व्यू देखें, अगर टोटालिटी में देखने की कोशिश करें तो कोई भी एक लेमैन ये जानना चाहेगा डॉक्टर साहब कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना सेफ और कितना इफेक्टिव होता है. कैन यू गिव मी सम परसेंटेज, सम नंबर.
0: अच्छा, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एज सच इज extremely successful. I would say more than 90-95% successful.
1: Fantastic.
0: Actually, if you say success in what terms, agar samjho aapko joint replacement ki zarurat hai, samjho.
1: Ji.
0: Aur aap mere paas aaye aapka ghutna lekar, which is the most common joint involved. So you will come to me because आपने सब कुछ ट्राई किया है, आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथी जो अपने देश में काफी कॉमन है, फिर मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी, सब कुछ किया आपने. और जब मैंने एक्सरे देखा आपका और हड्डी हड्डी पर टकरा रही है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको 100% सक्सेस मिलेगा, पेन रिलीफ, डिफॉर्मिटी करेक्शन, है ना. सो दैट इज 100% बिकॉज यू केम टू मी विथ डिफॉर्म पेनफुल जॉइंट.
1: ओके.
0: और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये चला जाएगा, तो यू कैन से इट इज 100% सक्सेसफुल सर्जरी. बट ऑब्वियसली रिस्क तो हर सर्जरी में होते
1: होंगे ही होंगे, होंगे
0: और या एंड वी डिस्कस दिस रिस्क विद द पेशेंट. सो उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेना चाहिए.

0: कि क्या रिस्क्स है. अभी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेनी पीपल आस्क फॉर बायलैटरल सर्जरी, यानी दोनों जॉइंट्स इकट्ठा कर दो डॉक्टर, दोनों घुटनों को मेरे ऑपरेशन कर दो, कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन करके मेरे फैमिली को भी कम प्रेशर आएगा, मुझे भी वापस बार बार आना नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह. तो ये जो है ना, तो बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट ये काफी ट्रिकी है. Obviously, the famous surgeons in the West started it, and then those surgeons themselves said that it is risky, and the risk is quite serious risk. For example, the risk of pulmonary embolism, deep vein thrombosis, is much more higher in bilateral surgeries. और उनका pain जो threshold जिनका कम है, वो ये surgery tolerate नहीं कर सकते, because it is a painful surgery.
1: Of course.
0: हालांकि आजकल we do use multimodal pain management, so patient को pain नहीं होता. और मेरे कई सारे पेशेंट्स से, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, सेम डे मैं उनको चलाता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, आज सुबह ऑपरेशन किया, आज शाम को आई एम कॉन्फिडेंट दैट द पेशेंट कैन स्टैंड एंड वॉक बिकॉज ऑफ एक्सेलेंट सर्जरी एंड एक्सेलेंट एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट.
1: ओके,
0: सो द थिंग इज, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी. देर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अनहैप्पी पेशेंट्स, बट देर आर मेनी रीजंस फॉर दैट.
1: Of course.
0: And the risks are like infection, joint sort of deep vein thrombosis, and sometimes scar issues can happen. But these are known risks of the surgery.
1: बहुत सबसे ज्यादा जो रीजन डॉक्टर साहब आपस में डिस्कशन करते हुए लोगों का सुनाई पड़ रहा है, वो ये भी है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो भी पेशेंट था, उन्होंने जो एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की थी कि आपको डेली इतना चलना है, खड़े होना है, वॉक करना है, उन्होंने वो की ही नहीं. दे जस्ट केप्ट ऑन सिटिंग ऑन द सोफा लाइक दे हैड बीन ट्रीटेड वेल. लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उनके जॉइंट्स स्टार्टेड फेलिंग बिकॉज प्रोबेबली उनकी जो मसल्स थी जो जॉइंट रिप्लेस्ड या उसके ग्राफ्ट के आसपास जो थी वो डेवलप ही नहीं हो पाई, उसकी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट वॉज फेलिंग एंड दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द डॉक्टर फॉर द रॉन्ग यू नो ट्रीटमेंट. कई बार लोग ये कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर साहब की गलती नहीं थी, इस पेशेंट ने तो एक्सरसाइज ही नहीं किया. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट एक्सरसाइज इज डॉक्टर साहब, वो कितनी जरूरी है?
0: तो समीर जी, शानदार जोड़ प्रतिस्थापन या जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेस के लिए देर आर मेनी फैक्टर्स. ऑब्वियसली द करेक्ट पेशेंट, an experienced surgeon with a good team, with good infrastructure, a good anesthesia team, good physiotherapy team, all of this is important.
1: Of course.
0: So इससे क्या होता है कि हम आजकल प्री रिहैबिलिटेशन यानी बिफोर जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑल्सो वी टेल पेशेंट्स कि आप एक्सरसाइज करना, you should do exercise, you should keep the joints as strong as possible by keeping the muscles around the joint as strong as possible. And after the joint replacement, it is extremely important to do a physiotherapy rehabilitation program under the guidance of a proper physiotherapist. Because ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? तो इमेजिन आपने ब्रांड न्यू मर्सिडीज ले ली
1: और उसको गैराज में खड़ा कर दिया,
0: गैराज में खड़ा कर दिया, तो क्या होगा उसका?
1: ओह गॉड, नथिंग.
0: तो सेम थिंग. एंड एक्चुअली आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड. सो ओवर एंथुजियास्टिक एंड ओवर जीलस physiotherapy and force and pressure can also be detrimental and cause issues. So the physiotherapy and the surgeon should be aligned, the patient should be cooperative. So sab kuch miljul ke aana chahiye.
1: तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कई लोगों के दिमाग में ये सारी बातें सुन के आ रहा होगा कि कब कराना चाहिए जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऐसी सिचुएशन कब आती है, किसी को कब पता चले कि अब आई थिंक आई शुड गो फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड हमें डॉक्टर किरण जैसे किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, व्हेन?
0: So it's very easy. I tell my patients joint replacement is the last bus stop. So it's the last stage. So the first few bus stops are, you know, simple things, weight loss, physiotherapy, rehabilitation, hydrotherapy, you know, supplements which will help the joint cartilage, proper calcium, vitamin D supplementation, all these things are important. But jab ye sab kuch fail ho jata hai, you've tried everything sincerely and kuch uska kuch fayda aapko dikhai nahi deta, aur jab x-ray mein हड्डी पर हड्डी टकरा जाती है, जिसे हम कहते हैं बोन ऑन बोन डिजीज, और जब डिफॉर्मिटी दिखने लगती है, जब पेशेंट्स के नी जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं या हिप जॉइंट्स में लिम्प आ जाता है या पेशेंट ठीक से चल नहीं सकता, एक दो स्टेप भी नहीं ले सकता, सो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस व्हेन अ जॉइंट रिप्लेसमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी.
1: ओके, तो बहुत बहुत क्लियर है दोस्तों, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत साफ तरीके से बताया कि सारी कोशिशों के बाद भी अगर आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, नीज यानी कि घुटने डिफॉर्म हो रहे हैं या फिर हिप जॉइंट्स वो भी डिफॉर्म हो रहे हैं, आप बुरा ना मानिएगा लेकिन पेंगुइन की तरह अगर आपने चलना शुरू कर दिया है, सो इट इज अ साइन दैट यू शुड इमीडिएटली गेट योर सेल्फ चेक्ड, प्रॉपर एक्सरे लेकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा बोन ऑन बोन डिजीज अगर आइडेंटिफाई होती है तो इमीडिएटली यू शुड कंसिडर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जो कि पूरी पूरी तरह से सेफ है, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है. डिपेंड करेगा आपकी जील पर, आपकी उत्साह पर, आपके डॉक्टर पर और आपके डॉक्टर की टीम पर. दोस्तों, डॉक्टर किरण एक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ बेहद बेहद सेंसिटिव इंसान है और एक बहुत प्यारे सिंगर भी हैं. तो चलिए ना कुछ उन्हीं के गाए हुए प्यारे प्यारे से गीत सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.

क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूब, एसडी बर्मन साहब की याद हो आई। दोस्तों चलिए अगला गीत सुनते हैं डॉक्टर किरण की आवाज में।

बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। हेमंत कुमार साहब को वापस से याद दिला दिया आपने, बहुत खूब। दोस्तों अगला गीत।

भाई वाह, एक के बाद एक सुपर सुपर हिट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते हमारे सभी ऑडियंस के लिए, सभी दोस्तों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समीर जी फॉर यू नो कॉलिंग मी एंड टॉकिंग टू मी अबाउट माय फेवरेट टॉपिक ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। आई एम डूइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी सिंस 1990 एंड वी आर इन 2025. So joint replacement is very very rewarding surgery for the correct indication and the correct patient. Simple message, haste raho, you know, exercise karte raho, weight control mein rakho, proper diet is extremely important, and correct advice and proper follow-up is important. So self-care, awareness, and just be happy and moving, because life is movement.
0: Fantastic. Bahut khub. Badi hi pyari baat kahi doc sahab ne. Life is movement, and the movement is life. And dosto, yes. Badhti umr mein, don't dance so fast, because music won't last. Bahut zyada जुझारू बनने की भी जरूरत नहीं है कि ठीक है, अगर आप मजबूत हैं, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका वेट बहुत अच्छा कंट्रोल में है, तो इवन यू कैन रन मैराथन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैराथन भी रन कीजिए। लेकिन बढ़ती उम्र में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बी वेरी वेरी केयरफुल। डॉक्टर किरण थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली ओब्लाइज्ड। हमारे सुनने वाले भी आज बहुत सारे भ्रांतियों को दूर कर अवेयर होकर जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
1: शुक्रिया समीर जी, थैंक यू वेरी मच।

0: सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड आज के कलाकार का लेकर हम हाजिर हैं। और आज जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर हमारे साथ हैं वो हैं सुनील जी। बाकी जैसा हम हमेशा करते हैं, हमारा स्टाइल है, हमारा सिग्नेचर है कि हम हमारे मेहमान से ही रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सबके सामने आएं और अपने बारे में बताएं। तो सुनील जी, आपका स्वागत है और हमारे सारे दोस्तों को आइए सामने मिलिए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करते हैं।
1: जी, मेरा नाम सुनील कुकड़े है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया हूँ और टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता था। तो ये जो संगीत का जो शौक है मेरे को पहले से ही है।
0: जी,
1: संगीत का शौक जो है मुझे।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों आपने जाना, अच्छा हाँ सुनील जी, आपने ये तो बताया नहीं कि आप कहाँ पर हैं।
1: हाँ, मैं रहने को मुंबई के नजदीक बदलापुर कल्याण है, वहां पे रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: पहले मैं मुंबई में, बिल्कुल प्रॉपर मुंबई में रहता था,
0: पहले आप मुंबई
1: में, ऐसा आउटर इसमें आया हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने जाना और आप जब सुनील जी की गायकी सुनेंगे तो आपको कभी तो किशोर कुमार साहब, कभी तो मन्ना डे, कभी तो महेंद्र कपूर जो कि बहुत ही कम सुनाई देते हैं, उनकी आवाजें सुनाई देंगी। तो सुनील जी मुझे ये बताइए कि ये कैसे आप कर लेते हो, आप कभी आपके गीत मैंने सुने तो कभी तो महेंद्र कपूर जी सुनाई देते हैं, कभी कोई और गायक।
1: हाँ जी, ये बचपन से शौक था। तो कुछ कॉलेज होने के बाद में मैं एक वेल नोन ऑर्केस्ट्रा था, मेलेडी मेकर्स वगैरह, ऐसे ऑर्केस्ट्रा में मैंने ज्वाइन किया था। तो तब ऐसा होता था कि आज ये गायक नहीं है, किशोर कुमार वाला गायक नहीं है, आने वाला नहीं है, तो किशोर कुमार के गा सकते हो क्या? हाँ चलो गा लेते। चलो आज मुकेश का गायक नहीं है, मुकेश के गा सकते हो, गा लेते। तो इस तरीके से मैं वो कॉपी करता था वो हर सिंगर को, और वो उसमें मैं काफी हद तक उसमें ये भी हो जाता था, सक्सेस भी मिलता था, कामयाबी होता था।
0: बहुत बढ़िया। तो बड़ी अमेजिंग बात लगेगी दोस्तों, जब आप भी अभी सुनील जी के गीत सुनेंगे तो आपको ये चीज बहुत साफ तौर पे सुनाई देगी। चलिए तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और पेश करता हूँ सुनील जी के ये गीत जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए।

0: बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत ही प्यारी सी शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि आप पुलिस महकमे में थे, मुंबई में पोस्टिंग थी, लेकिन अभी आप कल्याण में शिफ्ट हो गए हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके। तो आप अपने संगीत को अभी कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं अपने संगीत के बारे में? आपने बताया कि आप शुरू से गा रहे थे, लेकिन अब क्या?
1: हाँ, गा रहा था, लेकिन उसमें जो मुझे क्लासिकल वगैरह जो करना था, मुझे बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले इस सफर में, लेकिन मैं उनके साथ में ज्यादा जुड़ नहीं सका ड्यूटी की वजह से या और कोई वजह से। पर अभी ऐसा लगता है कि मैं अभी संगीत को पूरा ध्यान दूं, उसमें कॉन्सेंट्रेट करूं पूरा, और क्लासिकल जो है, जो भी थोड़ा आधा अधूरा है वो करते जाऊं, पूरा आगे बढ़ाऊं उसको, उसमें वक्त दूं थोड़ा।
0: ओके,
1: ऐसा पूरा प्लानिंग है उसमें, वो चल रहा है, मैं क्लास कर रहा हूं इधर।
0: तो उसके हाँ, उसी के लिए चलते, कोई क्लास वगैरह ज्वाइन किया आपने?
1: हाँ जी,
0: बहुत बढ़िया।
1: इधर
0: तो दोस्तों ये चीज सीखने की है हमें सुनील जी से, कि रिटायरमेंट के बाद भी वो आगे सीखने की इच्छा रखते हैं, आगे सीखने के लिए उन्होंने क्लासेस भी ज्वाइन की है, और अब वो संगीत को अगले पादान पे लेके जाना चाहते हैं। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हुए पहले दो प्यारे से गीत सुनते हैं सुनील जी के, जो उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारे लिए बनाए, उसके बाद उनके पास वापस आते हैं और बातचीत करने के लिए।

0: बहुत सुंदर सुनील भाई, आपके बहुत ही प्यारे गीत हमने सुने। चलिए, आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, संगीत तो है ही पहला नंबर, उसके बाद आपका क्या पैशन है, क्या इच्छा है, क्या शौक है जो आप लगातार करते रहते हैं?
1: मुझे दूसरों को हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जो भी और जिस तरीके से भी उनको हेल्प की जा सकती है और उनको संकट से मुक्त किया जा सकता है, तो ऐसे इसमें मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, गाइडलाइन देने की भी कोशिश करता हूँ। और मुझे पढ़ाने का शौक है, मैं डिपार्टमेंट में आने से पहले मैं क्लासेस लेता था 11-12 साइंस तक।
0: अरे वाह, हाँ, दैट इज नाइस, ओके। और जैसे आपने बताया कि आप दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब कौन लोग, मतलब हो सकता है घर के अगल बगल कुछ लोग होते हों, शायद कुछ बुजुर्ग, शायद कुछ बच्चे, कुछ ऐसा होता होगा ना?
1: हाँ देखो, स्कूल के हिसाब से अगर किसी को स्कूल का कुछ प्रॉब्लम है, फीस का कुछ प्रॉब्लम है, या उनको पढ़ाई का प्रॉब्लम है वो भी, या फिर बुजुर्ग है उनको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उसके बारे में भी, या फिर अगर कोई लेडी है और उसको कुछ मुझे मेरी तरफ से लीगल हेल्प दे सकता हूँ

0: बहुत बहुत सुंदर सुनील जी, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी। चलिए थोड़ा सा अपनी संगीत के बारे में अगर बताएं तो किस तरीके का संगीत आपको ज़्यादा पसंद आता है, मतलब क्लासिकल होता है या बॉलीवुड होता है, गज़ल, सूफी, भजन, किस तरीके का? वैसे तो सारा ही म्यूज़िक आपको पसंद होता होगा, फिर भी कोई पर्टिकुलर विधा है जो आपको पसंद आती है?
1: सेमी क्लासिकल, मुझे सेमी क्लासिकल, गजल, ऐसा मुझे पसंद है। और ऐसे इसमें मुझे अच्छे अच्छे लोगों ने हेल्प किया है, जैसे एक सुरेश वाडकर जी के दोस्त थे जो पुना रेडियो स्टेशन से म्यूजिक डायरेक्टर रह के वो रिटायर्ड हुए, वो मेरे बचपन के दोस्त है।
0: बहुत खूब, मतलब अमेजिंग अमेजिंग गुरुओं से आपने टिप्स लिए, ये बिल्कुल लेजेंड्स थे जिनके साथ आपने काम किया। बिल्कुल सही बात है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रह जाती हैं। तो दोस्तों याद कीजिए, आपके साथ जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसको आप बहुत ही फख्र के साथ कह सकें कि मेरे को ऐसा हुआ था और इस चीज को मैं हमेशा दूसरों को बताना चाहता हूँ। बहुत खूब, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आए सुनील जी के पास।

0: अमेजिंग. सुनील जी, आपने भरी पूरी जिंदगी देखी, बहुत एक्सपीरियंस अनुभव उठाया. आज के जमाने में जब डिजिटलाइज हो गई है पूरी की पूरी दुनिया, हर हाथ में फोन है, बहुत आराम से म्यूजिक भी आ जाता है, तो आज की जनरेशन के जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, जो नए गायक आ रहे हैं, उनको क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि बच्चा लोग, आप लोग ये कर लो तो आप लोग वही महेंद्र कपूर, वही मोहम्मद रफी के बराबर तो खैर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उनकी राह में चल तो पड़े, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप?
1: यही कि कोई भी सक्सेस को कोई भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है. जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही है. और वो मेहनत, वो कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें, इसमें कोई दोहरा नहीं है.
0: लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है. अगर आप चाहें कि 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप बहुत अच्छे सिंगर बन जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला है. सालों साल की प्रैक्टिस लगती है, रियाज लगता है, यही चीज सुनील जी बता रहे हैं. बहुत खूबसूरत. चलिए सुनील जी, चलते चलते अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे लोगों के नाम बताइए या उनके बारे में हमें बताइए जिन्होंने आपकी गायकी को हमेशा सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया. तो अगले गीत हम उन्हीं लोगों को डेडिकेट करेंगे. कौन है वो लोग?
1: देखिए, इधर के अभी वो हिंदी भाषिक नहीं थे, नहीं हिंदी भाषा वाले नहीं थे, मराठी. लेकिन वही जो बोल रहा हूँ, यशवंत देव जो संगीतकार थे, पंडित
0: जी
1: यशवंत देव, वो भी मेरे लिए अहम है. उन्होंने जो भी बताया. और दूसरे जो पुना रेडियो स्टेशन के म्यूजिक डायरेक्टर थे, विजय पवार, जो सुरेश वाडकर जी के गुरु थे, सॉरी दोस्त थे, मित्र थे. तो इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत ऐसा एहसान है कि उन्होंने हर वक्त मुझे गाइडलाइन दिया है कि तुम ऐसा गाओ, वैसा गाओ, जैसा होगा आप ये क्लास ज्वाइन करो, वो क्लास ज्वाइन करो, यहाँ से टिप्स. ये जो चीजें होती थी, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि मैं ठीक ठीक गा सकता हूँ ऐसा.
0: अच्छा. इतने प्यारे ढंग से सुनील जी कह रहे हैं कि वो ठीक ठीक गा सकते हैं, इतनी प्यारी गायकी है, इतना. लेकिन कितने मृदुल हैं सुनील जी, ये देखने वाली बात है. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये गीत हम सुनील जी के ही इन मोटिवेटिंग फैक्ट, जो फैक्टर्स रहे हैं, जो मोटिवेटिंग पर्सनल्स रहे हैं, उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, जिनकी वजह से सुनील जी आज इतना प्यारा गा सकते हैं और हम उनके गीतों का आनंद उठा रहे हैं. आइए सुनते हैं ये गीत.